आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: उठाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनिए और सुनाइए रेडियो विविधता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का।

तुम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, घर घर की आवाज, रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, हमारे अगले प्रोग्राम की प्रतीक।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा ही देश का भविष्य। आज के आमंत्रित मेहमान हैं श्रुति सयाल, विशेष आभार ईशान खन्ना, सहयोग आरजे गिरनी, रिकॉर्ड एडिट निर्देशन एवं प्रस्तुत करेंगे भारत सोपोरी।

0: नमस्कार, प्रणाम और सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह, और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज हमारे खास प्रोग्राम युवा ही देश का भविष्य में एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जो न केवल तकनीक की दुनिया में माहिर है बल्कि कला और समाज सेवा के क्षेत्र में भी एक चमकता सितारा है। हमारे साथ है श्रुति सयाल, जो वर्तमान में बिजनेस एनालिस्ट हैं और साथ ही अपनी MCA की पढ़ाई भी कर रही हैं। श्रुति, आपका रेडियो विदस्ता के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद भारत जी, आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं इस रेडियो स्टेशन पर आऊं और अपने विचार प्रकट करूं। धन्यवाद आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए।
0: श्रुति, आप एक बिजनेस एनालिस्ट हैं और बिजनेस एनालिस्ट के तौर पर काम कर रही हैं। सरल शब्दों में हमारे श्रोताओं को बताएं कि आपका काम असल में है क्या।
1: मेरा काम असलियत में ये है कि हमारे पास अलग अलग तरह के कस्टमर्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, वो हमें अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि हमारा बिजनेस ये है और हमें इस बिजनेस को डिजिटल करना है, अपनी एक वेबसाइट बनवानी है, हमें टेक्निकल वर्ल्ड में कदम से कदम मिलाकर चलना है, तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी वेबसाइट बनवा सकते हैं, अपना प्रमोशन करा सकते हैं सोशल मीडिया पर, गूगल पर और भी बहुत से स्थानों पर, जिससे वो अपनी मार्केटिंग कर सके और उनका बिजनेस बढ़ सके। तो हम उनके सिनेरियो को देखते हुए जो भी जिस भी कंडीशन में वो लोग हैं उनको सजेस्ट करते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। उनसे कम्युनिकेशन के बाद हम एक सॉल्यूशन पर आते हैं और उसके साथ हम आगे जाते हैं।
0: आपसे जानना चाहूंगा, जब आप कोई भी समाधान देते हैं किसी क्लाइंट को, तो आप उनसे क्या क्या जानकारी पहले लेते हैं ताकि आप एक निष्कर्ष तक पहुंच सकें।
1: हम बेसिकली उनके बिजनेस के बारे में जानते हैं कि क्या वो एक रियल एस्टेट एजेंसी के मालिक हैं या फिर उनकी कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। उसके अकॉर्डिंग हम उनकी एक रिक्वायरमेंट को एक गैदर करके एक प्रपोजल बनाते हैं, जिसमें उनकी रिक्वायरमेंट की उनके बिजनेस को क्या क्या डिजिटली प्रेजेंस के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या उन्हें वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है या फिर उन्हें ऑनलाइन प्रमोशन की रिक्वायरमेंट है। उसके अकॉर्डिंग हम एक स्कोप ऑफ वर्क बनाते हैं, उनकी वेबसाइट में क्या क्या होगा, क्या हम उन्हें डिजाइन कैसा देंगे, किस टेक्नोलॉजी में उनकी वेबसाइट बनाएंगे, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, हम टेस्टिंग करेंगे, फिर उनकी वेबसाइट को सर्वर पर डिप्लॉय कर देंगे। अगर वो मार्केटिंग में चाहते हैं तो हम उनकी सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कैसे करेंगे या फिर हम गूगल पर उसको कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे।
0: आप एक बिजनेस एनालिस्ट के तौर पर काम करती हैं, तो आपने पढ़ाई खत्म करने के बाद अब आप जॉब करती हैं, तो एक बिजनेस एनालिस्ट के तौर पर जब आप किसी भी क्लाइंट को समाधान देते हैं तो दिल में, मन में कितनी संतुष्टि होती है?
1: बहुत ज्यादा संतुष्टि होती है। मैं एक टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, मैं चाहती तो अपनी कोडिंग करियर भी परस्यू कर सकती थी आगे, पर मैंने ये प्लेटफॉर्म बिजनेस एनालिस्ट की पोजीशन इसलिए चुनी जिससे मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ, उन्हें एक समाधान दे सकूँ, अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं।
0: श्रुति, आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। आपसे अगला प्रश्न करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने बारे में एक संक्षिप्त सा इंट्रोडक्शन दें ताकि हमारे श्रोता आपको और अच्छे से जान सके।
1: थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यंग जेनरेशन से बात कर रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ फॉर श्योर, बहुत थैंक यू सो मच। बट अगर मैं अपने बारे में आपको बताऊं तो ये है कि मेरा नाम श्रुति है, मैं 22 साल की हूँ, अम्बाला में रहती हूँ और एक बिजनेस एनालिस्ट हूँ। जस्ट मेरी ग्रेजुएशन कम्प्लीट हुई थी लास्ट ईयर और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एक्सपोर्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज में वर्क करने की। एज एन इंटर्न मैं वहाँ पर गई थी, उसके बाद मैंने कोडिंग में अपना पैर जमाया, कोडिंग सीखी, फ्रंट एंड डेवलपमेंट पूरी करी, बट वो कहीं ना कहीं जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस था, मेरे कॉलेज टाइम का, मेरे स्कूल टाइम का, मेरी मैनेजमेंट स्किल्स, वो कहीं ना कहीं मेरे साथ जुड़े रहे और वहाँ के कंपनी के बॉस ने मुझे मौका दिया कि क्यों ना आप अपने स्किल्स को आगे और कंटिन्यू करो और हमारी कंपनी में एज अ बिजनेस एनालिस्ट रोल परस्यू करो। तो उसके साथ ही मैं आगे अब बढ़ती जा रही हूँ और इसी को आगे प्रोडक्ट मैनेजमेंट में आगे बढ़ाऊंगी।
0: बहुत खूब। श्रुति, मैंने सुना है कि आप थिएटर यानी रंगमंच से भी जुड़ी रही हैं, स्ट्रीट प्ले और वन एक्ट प्ले का अनुभव आपके प्रोफेशनल करियर में कैसे काम आता है?
1: स्ट्रीट प्ले हो या वन एक्ट प्ले, हर जगह पर आपको कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरत होती है। हमें कुछ भी लाइफ में करना है उसके लिए हमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही जब मैं क्लाइंट से बात करती हूँ, क्लाइंट से नहीं तो अपने कलीग से बात करती हूँ, डेवलपर से बात करती हूँ, डिज़ाइनर से, टेस्टर से, किसी भी इंसान से मैं बात करती हूँ, तो अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए सामने वाले के सामने हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए। हो सकता है कि हमारी नॉलेज बहुत अच्छी हो, बट अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है उस बात को बोलने का, तो शायद हम उतने अच्छे से काम ना कर पाए। तो हाँ, अगर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है या फिर मेरी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी है, तो ये जस्ट बिकॉज मैं थिएटर में थी, मेरे कल्चरल बैकग्राउंड की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ।
0: श्रुति, जहाँ तक रंगमंच का सवाल है, रंगमंच हमेशा हमें एक अच्छा इंसान बना देता है, हमें वो एज अ पर्सन ग्रो होने का मौका देता है, हमें बोलने का कॉन्फिडेंस देता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप थिएटर के साथ जुड़ी हैं, आप कल्चरल एक्टिविटीज के साथ जुड़ी हैं, तो ये आपके करियर में आगे भी बहुत सारा हेल्प करता रहेगा। आपके लिए संगीत क्या मायने रखता है?
1: संगीत मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि एक टाइम के बाद जब आप अपनी फैमिली में होते हो या अपने आप जॉब पर होते हो, कहीं पर भी होते हो, आप एक सिनेरियो में एक सीक्वेंस के साथ आप काम करते रहते हो, तो माइंड में बहुत सी चीजें आ जाती है। तो एक अच्छा म्यूजिक जो होता है आपको टेंशन फ्री करता है और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। जिसे सॉफ्ट म्यूजिक हम सुनते हैं या फिर पार्टी म्यूजिक सुनते हैं, वो एकदम से मूड स्विच कर देता है।
0: तो आप मानते हैं कि म्यूजिक एक थेरेपी हमें देता है? और अगर ऐसा है तो आप किस तरीके का संगीत सुनते हैं? आपकी पसंद का कोई भी गीत हो जो हम श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे, कृपया बताएं।
1: मुझे वैसे तो बहुत से सॉन्ग्स पसंद है, बट स्पेसिफिकली मैं रेट्रो म्यूजिक भी सुनना पसंद करती हूँ। तो उसमें मुझे लिखे जो खत तुझे तेरी याद में, ये वाला गाना बहुत पसंद है।
0: आप कुछ गुनगुनाना चाहेंगे इस गीत को?
1: जी बिल्कुल,
0: प्लीज।

0: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। हम आज इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं श्रुति सयाल से। इस कार्यक्रम का नाम है युवा ही देश का भविष्य। हमें बहुत अच्छा लगता है युवाओं से बात करने की, ताकि हम ये जान सकें कि वो अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं और देश के लिए वो क्या कुछ करना चाहते हैं। श्रुति से अगला प्रश्न पूछते हैं। श्रुति, आप रोट्रैक्ट क्लब के सचिव भी रही हैं, एक लीडर के तौर पर आज के युवाओं को क्या संदेश आप देना चाहेंगे?
1: जैसे कि मैं 2022 से 2023 तक एक सेक्रेटरी के रोल में थी, उस रोल में ने मुझे सिखाया कि आपकी डेजिग्नेशन मैटर नहीं करती है
0: जी,
1: कि आप किस पोजीशन पे हैं
0: जी।
1: अगर आपके अंदर एक जील है, एक पावर है, कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो आप कर सकते हैं। एक सिचुएशन उस टाइम पर ऐसी आई कि जो क्लब के प्रेसिडेंट थे वो अवेलेबल ही नहीं रहे काफी टाइम तक, तो उस टाइम को ना घबराते हुए मैंने उस चीज को एज अ अपॉर्चुनिटी लिया, क्यों ना मैं एज अ प्रेसिडेंट काम करूं
0: जी।
1: मैंने पूरे क्लब को संभाला और उसी चीज ने आज मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, कॉन्फिडेंस दिया है, अपने ऊपर विश्वास इतना दिलाया है कि हाँ कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी भी मैं एक ऐसी पोजीशन पे हूँ जहाँ पे मैं सीनियर्स के साथ रहती हूँ, पर मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जूनियर हूँ या मुझे एक साल हुआ है, मैं हर चीज कर सकती हूँ अगर मेरे अंदर आत्मविश्वास है तो।
0: तो इसके साथ ही जुड़ता हुआ मैं प्रश्न आपसे करना चाहूंगा, जितने भी श्रोता हमारे आपको इस समय सुन रहे हैं, खास करके आप युवतियों को क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं उन्हें बस यही कहना चाहती हूँ कि अपने ऊपर विश्वास रखें और लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते। आप कोशिश करेंगे, छोटी से छोटी छोटी छोटी कोशिश ही करिए। ऐसा नहीं है कि आज ही आप बिल्कुल अच्छा आपको पैकेज मिल जाएगा या फिर आप बहुत अच्छे एक मुकाम पे पहुंच जाएंगे, पर छोटी छोटी चीजों से कोशिश करिए। अपने आप को बाउंडेड मत रखिए कि हाँ कि अच्छा ऐसी कंडीशन है तो कोई बात नहीं, हम ऐसे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत रखिए अपने जीवन में। हमेशा अपने आप के अंदर एक ऐसा जुनून रखिए कि नहीं, अगर जो गलत है तो गलत है और जो सही है वो सही है, और इसके साथ ही आगे बढ़ते रहिए।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही। हमारे देश में युवा हो या युवतियां हो, आमतौर पर यह कहा जाता है कि देश की जो ताकत होते हैं वो देश के युवा होते हैं, और आज आपको जितने भी अवसर मिल रहे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए कार्य करने के लिए, तो कितनी संतुष्टि होती है कि आप भी देश निर्माण में कार्य कर रही हैं।
1: बहुत संतुष्टि होती है। अगर मुझे कोई सुन रहा है और मेरी बातों से किसी के जीवन पे प्रभाव पड़ रहा है, या फिर अगर मैं कहीं पर भी हूँ, मैं अपने घर पर हूँ, मैं अपने पड़ोस में हूँ, मैं अपने वर्क प्लेस पे हूँ, कहीं पर भी हूँ, अगर मेरी बातों का किसी पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, मुझसे वो प्रेरित हो रहे हैं और अपने जीवन में बदलाव करना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं देश के विकास पर भी इम्पैक्ट डालता है।
0: आप एक एक्सट्रोवर्ट हैं, ये मैंने आपके डिटेल से पढ़ा है, और आपको घूमना बहुत पसंद है। क्या नए लोगों से मिलना और नए विचार साझा करना आपके भविष्य के लक्ष्यों में मदद करता है?
1: जी हाँ, बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं एक एक्सट्रोवर्ट हूँ, और ये चीज मुझे मेरे जेनेटिक्स से मिली है, क्योंकि मेरे घर पे सभी बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है। सबको ही बहुत पसंद है लोगों से बात करना, थॉट्स एक्सचेंज करना, बस डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है कि आप उस चीज को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने अपने एक्सट्रोवर्ट नेचर को इस तरीके से इस्तेमाल किया है कि क्या हम किसी से क्या नॉलेज ले सकते हैं, किसका क्या थॉट प्रोसेस है, और वो मेरी जीवन में बहुत चीज काम आती है कि मैं आगे, और तभी मुझे पसंद भी है काफी लोगों से बात करना, जैसे कि आज मैं आज आपसे मिली हूँ और आज मेरे आपसे थॉट एक्सचेंज हुए हैं, मुझे कुछ नया जानने को मिला है और मैं आपसे कुछ सीख कर ही जाऊंगी आगे।
0: अभी आपके करियर की शुरुआत हुई है, आपका इमीडिएट लक्ष्य क्या है?
1: मेरा लक्ष्य सिर्फ एक ही है, वो चाहे जिस भी जॉब रोल में मैं पूरा करूं, मैं एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन बनना चाहती हूँ, जो कि किसी पे भी डिपेंडेंट ना रहे, अपने फाइनेंसेस के लिए भी कमाना चाहती हूँ, जिससे मैं डोमिनेंस रहूँ या फिर मुझे कोई कुछ कह ना सके। मैं उनसे कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मैं घर के या बाहर के किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन में कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊँ, मैं अपनी तरफ से सपोर्ट कर पाऊँ, क्योंकि पेरेंट्स ने मुझे बहुत नाजों से पाला है और बहुत फाइनेंशियल या फिर कंडीशन जो भी है उसमें मेरा हमेशा कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया किसी भी फैसिलिटी में, एंड कभी डिफरेंस भी नहीं किया मुझ में और मेरे भाई में. तो बस मैं यही चाहती हूँ, मैं जिसके साथ भी हूँ या फिर जिसके साथ अभी हूँ उनको फाइनेंशियली कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊँ और आगे वो भी कह सके कि हाँ ये मेरी बेटी है.
0: श्रोताओं, मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे देश में जो बदलाव आ रहा है वो एक सोच का बदलाव आ रहा है. एक समय था जब महिलाएं किसी भी डिसीजन में उनका कोई रोल नहीं होता था. हम श्रुति से बात कर रहे हैं और उनका कहना है कि उनका लक्ष्य है कि वो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लें, अपने जिंदगी में, अपने परिवार में जो भी डिसीजंस हो उसमें उनका साथ होना चाहिए. अगर ये सोच श्रुति रखती है तो ये हमारे देश की हर एक युवती को रखना चाहिए ताकि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो, आने वाली जिंदगी उनकी अपने दिशा से हो, वो एंटरप्रेन्योर्स बने, वो लीडर्स बने, वो कंपनियों की शुरुआत करें और उन कंपनियों की सीईओ भी बने ताकि हमारा देश आगे बढ़े. और ये हम सबके लिए एक बहुत खुशी की बात है कि देश बदल रहा है. श्रुति, चलते चलते उन युवाओं के लिए कोई एक बात जो BCA या MCA कर रहे हैं और कॉरपोरेट दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, आप उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे और साथ में क्या चुनौतियां हो सकती है और क्या फायदे हो सकते हैं?
1: जी बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि सब अपने लक्ष्य को लेकर दृढ़ रहे, फोकस्ड रहे, डिटर्मिनेशन, बस यही एक की है जो आपको सक्सेसफुल बनाएगी. हाँ, हो सकता है जैसे कि मैं भी BCA कर मैंने जॉब करी और मैं कॉरेस्पॉन्डेंस है MCA कर रही हूँ और उसके साथ साथ भी मतलब ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि हम अपनी दिनचर्या कैसे मैनेज कर रहे हैं क्योंकि ऑफिस से बिल्कुल आकर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचता. बट स्टिल इसके बीच में भी मुझे फील हुआ कि नहीं, मुझे और भी कुछ करना चाहिए. तो मैंने PMP सर्टिफिकेशन में भी अप्लाई करा हुआ है. तो दिन आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा, हैक्टिक हो जाएगा, बट जब आपको इसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, आपके हाथ में वो आपकी ड्रीम जॉब होगी या फिर जिस भी करियर में आप परस्यू करना चाहते हो वो जब आपके पास होगा तो फिर आपको लगेगा कि हाँ आई वॉज राइट. टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो उसको यूटिलाइज करना और उसको फुलेस्ट यूज करना. ऐसा नहीं है कि अपनी इंजॉयमेंट में भूल जाती हूँ उसके चक्कर में कि नहीं मैं पूरा दिन ही ऐसे जा रहा है या फिर मेरे वीकेंड्स ऐसे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है. अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ऐसा ही हमें वर्क प्लेस पे भी सिखाया जाता है कि लर्निंग कभी नहीं रोकनी चाहिए. लाइफ में हमेशा हर दिन आपको कुछ नया सीखना चाहिए अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर यू आर डूइंग. सो मैं यही कहना चाहूँगी कि लाइफ तो हेक्टिक होगी बट जो भी आपको एंड में रिजल्ट मिलेगा वो बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला. सो स्टे फोकस्ड, डिटरमाइंड.
0: इसके लिए मैं एक कोटेशन मैंने कहीं पढ़ी है तो वो मैं जरूर कहना चाहूंगा अपने श्रोताओं से, वो ये है थिंक बिग एंड एक्ट. आप बड़ा सोचिए और उस पर कार्य करिए, एक दिन जरूर आपको सफलता मिलेगी. एक महिला होने के नाते ये बताइए कि कार्यस्थल जहां आप काम करती हैं, आवागमन या आप एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं और डेली लाइफ में कितना सुरक्षित आप महसूस करती हैं एज अ वुमन?
1: मैं अपने वर्क प्लेस पर और जो भी रूट में लेकर जाती हूँ मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सेफ फील करती हूँ. इसके पीछे का रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई इंसान हमें सिक्योर या इनसिक्योर फील नहीं कराता है. शायद हम में ही उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हम जहाँ पर भी है वहाँ पे हम कॉन्फिडेंटली बैठे या फिर हम कॉन्फिडेंटली वर्किंग करें. तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई थर्ड पर्सन आके कुछ पोक कर जाएगा या फिर आपको कुछ इनसिक्योर अनकंफर्टेबल फील करा देगा, ऐसा मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होता. बाकी देर इज़ अ सिचुएशंस, आती है सिचुएशंस, बट उसमें आपको कॉन्फिडेंटली एंड बोल्डली उसका रिप्लाई करना चाहिए. पर मुझे अपने वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा सुरक्षित फील होता है क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी है और मेरा वर्कप्लेस काफी सेफ भी है.
0: बहुत अच्छी बात कही श्रुति आपने. इस कार्यक्रम में जिसमें हम आज बात कर रहे हैं इसका नाम है युवा ही देश का भविष्य है और मुझे वाकई लग रहा है कि जब हम युवाओं से बात करते हैं हमें ऊर्जा भी मिलती है और हमारा देश आगे बढ़ता हुआ दिखता भी है. आज के इस कार्यक्रम में हमारी अतिथि श्रुति ने हमें बताया कि कैसे तकनीक कला और समाज सेवा को एक साथ साधा जा सकता है। श्रुति, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यहाँ अम्बाला कैंट के इस FM रेडियो स्टेशन पर आने के बाद आपको यहाँ आके कैसा लगा और अंत में आप सभी सुनने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मुझे इस रेडियो स्टेशन पर आकर बहुत अच्छा लगा कि मैंने सभी लोगों से बात करी, आपसे बात करी। मुझे पता चला कि लोगों का क्या थॉट प्रोसेस होता है, लोग कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते, क्या हम नया सीख सकते हैं। और इट इज़ लाइक नेवर एंडिंग गेम, आप जितना सीखते जाओगे उतना आगे बढ़ते जाओगे। अगर एक लाइन में कुछ मैं संदेश देना चाहूँ, जैसे कि अभी हमारा न्यू ईयर मंथ भी चल रहा है, तो मैं उसमें बस एक ही बात कहना चाहती हूँ एक कोट में, जो बीत गया उसका क्या मलाल करे, जो बीत गया उसका क्या मलाल करे, अब जो हासिल है अब उसी से सवाल करे। बहुत दूर तक जाते हैं यादों के काफिले, फिर क्यों पुरानी बातों में दिन से रात करे, जो बीत गया उसका क्या मलाल करे। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस यही कहना चाहती हूँ कि जो भी युवा अपने विचारों को यहाँ पर आकर रखना चाहते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने थॉट्स को एक्सचेंज करना चाहते हैं, वो इस रेडियो स्टेशन पर आ सकते हैं मेरी तरह, और अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हैं ताकि हम किसी का मार्गदर्शन कर सके।
0: दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। सुनते रहिए FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। यहाँ हर धड़कन में नई उमंग है। और आपको आज के मेहमान श्रुति के एक और गीत के साथ छोड़े चले जा रहे हैं और हम आपसे चाहेंगे इजाजत। मुझे दीजिए इजाजत, किसी और कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट करूंगा। तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: नमस्कार, जय हिंद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा ही देश का भविष्य। आज के आमंत्रित मेहमान थे श्रुति सयाल। विशेष आभार ईशान खन्ना। सहयोग आरजे किरणी। रिकॉर्ड एडिट निर्देशन एवं प्रस्तुत किया भारत सोपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो रेडियो वित्तस्ता 90.0 मेगा हर्ट्ज़ ते सुनते रहो अपने

0: आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त राहुल अलियान, लेकर आया हूं कहानियों का सिलसिला। आपके लिए जो कहानी लाया हूं, उस कहानी का शीर्षक है परिवार में सहयोग और सम्मान की शक्ति। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत बड़ा परिवार रहता था। परिवार में दादा दादी, माता पिता और उनके बच्चे थे। परिवार के हर सदस्य की अपनी अपनी जिम्मेदारियां थी, लेकिन सभी एक दूसरे का सम्मान करते और एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। गांव के तालाब का पानी सूखने लगा था और गांव के लोग परेशान हो गए थे, क्योंकि यह पानी उनके खेतों के लिए जरूरी था। दादा ने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया और कहा,
1: हम सभी को मिलकर तालाब को फिर से भरने की कोशिश करनी होगी। यदि हम एकजुट होकर काम करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी।
0: सबने मिलकर काम शुरू किया। छोटे बच्चे पानी इकट्ठा कर रहे थे, महिलाएं खाना बना रही थी और पुरुष तालाब की मरम्मत कर रहे थे। परिवार का हर सदस्य अपनी अपनी भूमिका निभा रहा था। काम करते हुए दादा ने कहा,
1: यह काम केवल मेहनत से नहीं होगा, हमें एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान से काम करना होगा, तभी हम सफलता पा सकते हैं।
0: बहुत मेहनत के बाद तालाब फिर से भर गया और गांव के खेतों को पानी मिल गया। सभी लोग खुश थे। परिवार के हर सदस्य को समझ में आ गया कि यदि हम एक दूसरे का सम्मान करें और मिलकर काम करें तो हम किसी भी मुश्किल का हल निकाल सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार का प्रेम, सम्मान और सहयोग जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। परिवार में एकता और प्यार से ही हम हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। माता पिता का बलिदान और बच्चों का सम्मान दोनों ही परिवार की नींव होते हैं। यही परिवार के असली मूल्य हैं, जो हमें जीवन में सफलता और खुशी दिलाते हैं।

अगर आपके पास भी कोई मौलिक कहानी है तो आप हमें भेज सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर पर 7056413010 पर। अगर हमें वो कहानी अच्छी लगी तो मैं उस कहानी को अपनी आवाज़ देकर श्रोताओं तक पहुंचाऊंगा। मिलता हूं एक और कहानी के साथ, तब तक आप खुश रहे, खुशहाल रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन, सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

0: दो-दो किलो के अमरूद। ये कहानी अमरूदों की खेती की है, ऐसे अमरूद जो आपने शायद कभी नहीं देखे होंगे। ये अमरूद ऑनलाइन और ऑन डिमांड ही बेचे जाते हैं, इस दावे के साथ कि डिब्बों में बंद हर अमरूद एक निश्चित वजन का होगा। अमरूदों का वजन 2 किलो भी हो सकता है और इन अमरूदों की कीमत 300 रुपये प्रति किलो। हरियाणा के जींद में इन खास अमरूदों की खेती करने वाले नीरज ढांडा हर अमरूद के वजन के लिए किस्मत के भरोसे नहीं रहते। वो खुद तय करते हैं कि उनके बागीचे के एक पेड़ पर आने वाले अमरूद कितने वजन के होंगे। ये हैं थाई अमरूद। इनके पेड़ों की एक टहनी पर 2 किलो के अमरूद भी आ सकते हैं। मर्जी आपकी है, आप 2 किलो का एक अमरूद उगाना चाहते हैं कि 200 ग्राम के 10 अमरूद। नीरज अपने ग्राहकों की मांग के हिसाब से अपने फलों का वजन तय करते हैं और उसी संख्या में पेड़ों में अमरूद पैदा करते हैं। मैनेजमेंट करने के बाद नीरज ढांडा ने कुछ समय नौकरी की, फिर उन्होंने अमरूदों की खेती करने का फैसला किया। जल्द ही उनकी समझ में आ गया कि किसान की असली चुनौती बाजार में है। किसान के खून पसीने से होने वाली पैदावार की कीमत मंडी में बैठे आढ़तिये तय करते हैं। लिहाजा नीरज ने अमरूद की एक ऐसी प्रजाति खोजनी शुरू की जो लंबे समय तक सुरक्षित रहे और जिसकी अलग तरह से मार्केटिंग की जा सके। उन्हें थाई अमरूदों के बारे में पता चला। थाई अमरूद उगाने की पूरी जानकारी लेने के बाद उन्होंने थाई अमरूदों की खेती शुरू की। एक एक अमरूद को बच्चे की तरह सहेजने, संभालने और पालने का नतीजा धीरे धीरे दिखना शुरू हुआ और पेड़ों में शानदार फल लगने लगे। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी और वो थी शानदार अमरूदों के लिए शानदार भाव देने वाले बाजार की खोज। नीरज ने डायरेक्ट मार्केटिंग करना तय किया, एक योजना बनाई, वेबसाइट बनाई और वेबसाइट के जरिए अपने अमरूदों की मार्केटिंग शुरू की। अगले ही सीजन से उसके नतीजे दिखने लगे, नीरज की दुकान चल निकली। नीरज के 3 एकड़ खेत में पानी भी एक समस्या है, भूजल खारा है और सरकार प्रति एकड़ प्रति महीने आधे घंटे तक पानी की सप्लाई देती है, जबकि अमरूद के हर पेड़ को लगभग रोज 4 लीटर पानी चाहिए। लिहाजा नीरज ने ड्रिप वाटर इरिगेशन का सहारा लिया और सिंचाई की परेशानी दूर की। नीरज ढांडा की खेती इस बात की एक शानदार मिसाल है कि थोड़ा रिसर्च और थोड़ी मेहनत की बदौलत किसान बाजार की चुनौतियों से पार पा सकता है। सिर्फ एक बात की जरूरत है, आत्मविश्वास की। सफलता मिलनी तय है।
1: वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

0: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
1: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
0: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
1: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
0: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।
2: सही रास्ता, सही चुनाव। सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
3: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
2: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
3: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
2: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
3: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
2: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
3: www.sdcollegeambala.ac.in।
4: नमस्कार, 90.0 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो विस्तार। हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो और लघु कथाओं की श्रृंखला में मैं हूं आपका रेडियो दोस्त नरेश शर्मा। आज आपके लिए लेकर आया हूं एक और नई लघु कथा जिसका शीर्षक है जीने की राह। और इस लघु कथा के रचनाकार हैं ललित अकिंचन। आइए सुनते हैं ये लघु कथा। संत एकनाथ के पास एक आदमी गया और पूछा, दुनिया में किस तरह से रहना चाहिए? संत ने कहा, जरा सामने आ, पहले तेरा माथा तो देखूं कि तेरा जीवन बाकी भी है या नहीं। वो आदमी सामने आया और माथा दिखाया। संत ने कहा, तेरी तो 7 दिनों में मौत है, अब तू कहे तो बताऊं। आदमी बोला, फिर रहने दो। भागता हुआ चला गया। सबसे पहले उसने उन लोगों से माफी मांगी जिनको उसने भला बुरा कहा था, फिर जिन लोगों से झगड़ा किया था, बेईमानी करी थी, उनसे भी जाकर माफी मांगी। तब घर जाकर बच्चों को उनका हक दिया, पत्नी को पत्नी का हक दिया। पत्नी से बोला, मेरी यात्रा का मोड़ मुड़ रहा है, मैं भगवान का सहारा ले रहा हूं, हो सके तो तू भी भगवान का सहारा ले ले। इस तरह से 6 दिन बीत गए। 7वें दिन वो भगवान के ध्यान में बैठा, मन बड़ा हल्का था। फिर उसे ध्यान आया कि एक बार संत से चलकर पूछ लें कि कैसे जीना है, अगले जन्म में फिर वैसे ही जी लेंगे। गया संत के पास, पूछा, महाराज किस तरह से दुनिया में जीना चाहिए? संत ने कहा, पहले ये बता कि ये 7 दिन कैसे बीते, कितने लड़ाई झगड़े किए, अरे किस किस से बेईमानी की? वो आदमी बोला, महाराज कोई नए लड़ाई झगड़े तो नहीं किए, बल्कि जो पुराने थे ना वो भी जाकर निपटाया हूं, माफी मांगाया हूं और उन्होंने माफ भी कर दिया है। संत ने पूछा, अच्छा इन 7 दिनों में भगवान को याद किया कि नहीं? वो बोला, महाराज भगवान ही याद रहा, क्योंकि मौत सामने थी। संत ने कहा, तो जा फिर बाकी की जिंदगी भी ऐसे ही बिता ले। बोला, पर आपने तो हमारा माथा देखा था कि 7वें दिन हमारी मौत हो जाएगी। संत ने कहा, मौत तो 7 दिनों में ही है, सोमवार नहीं तो मंगलवार, ये 7 दिन ही हैं। मैंने सिर्फ तुमको समझाने के लिए जरा घुमा फिरा कर समझाया है वरना आदमी सीधे तरीके से समझता कहाँ है। तो आप भी ये समझ लीजिए कि दोस्तों, जब तक हमारे दिमाग में चीज रहती है कि हमारे पर किसकी नजर है, हमें किसी के पास जाना है, हम चंद दिनों के मेहमान हैं, अपना किरदार निभाने के लिए आए हैं, तब तक हम अपने व्यवहार को ठीक रखते हैं, और जब ये भूल जाते हैं फिर अपने पुराने ढर्रे पर चलाते हैं। कोशिश करें हर वक्त दिमाग में रहे कि ईश्वर और मौत को हमेशा याद रखा जाए।

0: आप सुन रहे थे रेडियो वितस्ता पर हमारी लघु कथाओं की श्रृंखला में हमारी आज की कहानी, जिसका शीर्षक था जीने की राह। और इस लघु कथा के रचनाकार थे ललित अकिंचन। और दोस्तों, अगर आप भी लघु कथाएं लिखते हैं या आपके पास भी कोई ऐसी लघु कथा जिसको आप किसी और तक पहुंचाना चाहते हैं, तो अपनी लघु कथाएं रेडियो वितस्ता पर हमें भेजिए। हम आपकी लघु कथाओं को आपके नाम के साथ ही प्रसारित करेंगे। हमारे पास लघु कथाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क कीजिए। हमारा दूरभाष नंबर है 7056413010। और अब अपने रेडियो दोस्त नरेश शर्मा को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं एक और नई लघु कथा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।
1: सही रास्ता, सही चुनाव। सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
2: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
1: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
2: www.sdcollegeambala.ac.in।
3: तोशु बोजान FM 90.0 रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी हुन। बोजान रोजू पनीन पसंदीद बर्थ।
4: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
5: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
8: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से

0: ललेश्वरी, जिन्हें ललदेव या ललेश्वरी शिव योगिनी भी कहा जाता है। 14वीं शताब्दी की कश्मीरी संत कवियत्री और शिव दर्शन की प्रमुख साधिका थी। उन्होंने ललवाक नाम से जाने जाने वाले रहस्यमयी दोहों में जीवन, आत्मा और ईश्वर के गहरे सत्य व्यक्त किए। उनकी वाणी में भक्ति, दर्शन और मानवीय संवेदना का अद्भुत संगम मिलता है। ललेश्वरी ने समाज को बताया कि ईश्वर मन के भीतर है, बाहरी अडंबरों में नहीं। शिव योनि का अर्थ है शिव की सृजनात्मक ऊर्जा, अर्थात वह दिव्य स्रोत जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। कश्मीर शिव दर्शन में शिव योनि को सृजन, चेतना और शक्ति का प्रतीक माना गया है। ललेश्वरी की वाणी में शिव योनि का उल्लेख आत्मबोध और परम चेतना की अवस्था को समझाने के लिए आता है। ललवाक शब्द का अर्थ है लल यानी ललेश्वरी, के वाक यानी वचन या दोहे। ये छोटे छोटे दोहे या सूक्तियां हैं जिनमें उन्होंने साधना, आत्मज्ञान, प्रेम और सच्चे ईश्वर की अनुभूति को सरल भाषा में व्यक्त किया है। ये वाक आज भी कश्मीर की आत्मा की आवाज माने जाते हैं। हमने ललेश्वरी के ललवाक को हिंदी और कश्मीरी में तैयार कर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम मानते हैं कि ये ललवाक हमारी जीवन का रास्ता आसान कर देती है। इन ललवाक को समझाया है हिंदी और कश्मीरी में डॉक्टर राज नेहरू जी ने और आवाज दी है श्रीमती नीरजा पंडित ने। इनको तैयार किया है जाने माने फिल्म निर्देशक और निर्माता अशोक पंडित ने। तो आइए सुनते हैं ललवाक की ये श्रृंखला।
1: नमस्कार, आज का जो ललवाक ललेश्वरी शिवयोगिनी द्वारा कहा गया है ये बहुत ही विचित्र है, क्योंकि इसमें अध्यात्म और विज्ञान दोनों का मिश्रण आपको दिखाई देगा। ललदेत कहती है, गोरस प्रछोम सास लेटे यस्न क्या मनान तस क्या नाम, प्रसान प्रसान थचस तलूसस केहनस निशी क्या थाम द्राव। यानी ललदेत कहती है, गोरस प्रछोम सास लेटे हजारों बार मैंने अपने गुरु से पूछा, यस्न क्या मनान तस क्या नाम, जिसे कुछ भी नहीं कहते उसका नाम क्या है। प्रसान प्रसान थचस तलूसस पूछते पूछते मैं थक और हार गई, केहनस निशी क्या थाम द्राव, और अंत में कुछ नहीं मैं से ही सब कुछ निकला। ललदेत की वो प्रभु को जानने की प्यास और उस प्रभु को चाहने में वो अपने गुरु के पीछे पड़ी हुई है। वो गुरु भी क्या रहा होगा और ललदेत भी क्या रही होगी कि जो निरंतर बिना थके लगातार निरंतर उसको ढूंढने का प्रयास कर रही है। तो ललदेत हमें ये इशारा करती है यहाँ पे कि जो नाम, रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस, इनमें प्रभु नहीं मिलता। नाम तो हम इंसानों ने दिए हैं परमात्मा के, कोई भगवान कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है। ललदेत के कहने के अनुसार नामों में कुछ नहीं रखा था, और अंत में मैंने जो पाया वो पाया कि कुछ नहीं में ही वो सब कुछ है। यानी जो मैं पूछ रही थी, जिस सच्चाई की खोज मैं कर रही थी, वो सच्चाई की खोज मुझे किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में नहीं मिला। वो खोज मेरी खत्म हुई जब मैं अपने में ही डूब गई, जब मैंने अपने आप को ही समाप्त किया। अपने आप को समाप्त करने का मतलब ये है कि जिन विचारों से मैं अपने आप को खड़ा करता हूँ, बनाता हूँ, वो विचार ही जब मैंने खत्म कर दिए और विचारों के पार चला गया, तो उस कुछ नहीं में से मुझे कुछ दिखाई दिया। और साइंस भी यही कहता है कि ये जितना भी मैनिफेस्टेशन है यूनिवर्स का, ये नथिंगनेस से निकला हुआ है। ये सारा एक क्वांटम फील्ड है और उसी क्वांटम फील्ड की नथिंगनेस में से ये सारी फिजिकल वर्ल्ड की मैनिफेस्टेशन।

0: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
1: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
0: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
1: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
0: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।
2: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
3: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
4: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
3: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
4: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
3: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
4: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स, सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
3: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
4: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

हमारा यह सफर यूं ही चलता रहा और गुजरती गई सदियां। पनाह गाहों में पनाह लेने की ख्वाहिश सीने में ही दब गई। तुमसे मिलना, तुमसे बिछड़ना एक आदत सी बन गई। बीते लम्हे रुसवाई का रास्ता दे गए और पथरीली रेतीली राहें मंजिल का पता बता गई।

0: सफर
1: छूट गए साथी, सिमट गई जिंदगी, जज्बा मोहब्बत का टूट गया, बिखर गया हर पल अपना साया भी पराया होने लगा, जो मिले वो अचानक रूठ गए, यहां के साहिल दरियाओं से बिछड़ गए और इन दरियाओं के पत्थर पानी के लिए तरस रहे हैं। इन्हीं पानियों में कभी चांद आकाश से उतरकर डुबकी लगाया करता था, पर अब सब कुछ अलग है, भिन्न है, जब अपने ही पराए हुए

बाती ही और है तुम्हारी फरामोशी। रंग बिखर पड़े हैं पर रक्स करती हैं फिजाएं। शायद सोचा होगा कि हवाओं के रुख में बदलाव होगा, पर ये जरूरी तो नहीं कि मौसम बदलते ही तुम लौट आओगे। इन घने बादलों को चीर कर। और यह भी तो जरूरी नहीं कि दिल की बातें हों, बातों बातों में तुम याद आओगे।

एक प्यारा सा गांव है, पर अजनबी रास्ते हैं। किससे मुखातिब हो जाए, हर कोई एक दूसरे से अनजान है। इन फासलों के दरमियां अपने आप को भी पहचानना मुश्किल सा लगता है, लेकिन इसके बावजूद यहां खुशबू है अपनेपन की, यहां मिठास है मोहब्बतों की, और दूर एक कोने में यहां दर्द भी बिकता है।

परी आसमां से उतरी थी, मुझे छूकर गुजर गई। अपने दुपट्टे से मेरी नींदों को चुरा ले गई। मेरे कानों में चुपके से कुछ कह गई। ये कुछ लम्हे तुम्हारे नाम हो गए, इनको संजो कर संभाल कर रखिएगा। अपनी दुआओं में मुझे शामिल कर मुझ पे एहसान जताया, नवाजिश करम, शुक्रिया।

0: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
1: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
0: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
1: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
0: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।

0: You are listening FM 90.0 MHz Radio Vitasta, Hum Safar Zindagi Ka, a community radio licensed by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.
1: सही रास्ता सही चुनाव सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास
2: ग्रेड नेक A++ CGPA 3.72
1: कोर्सेज 22+ UG PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस वाईफाई मॉडर्न लैब्स स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स सपने आपके जिम्मेदारी हमारी
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
2: www.sdcollegeambala.ac.in
3: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है
4: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित श्रम एवं रोजगार भूमि और पारिवारिक विवाद एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं
3: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
4: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है
3: सुलह का इरादा शीघ्र न्याय का वादा
5: प्रस्तुत है कार्यक्रम पहलू और गीत एपिसोड 16 शीर्षक है वफा एडिट किया भारत सपोरी ने स्क्रिप्ट निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता RJ किरणी
6: वफा सिर्फ एक वादा नहीं एक जज्बा है जिसे निभाने वाले कम होते हैं और आजमाने वाले हजार कभी ये मोहब्बत का रूप लेती है कभी जुदाई का दुख आज पहलू और गीत में चलिए महसूस करते हैं वफा के हर पहलू को मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता 90.0 FM पर सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार मोहब्बत सिर्फ कहना नहीं मोहब्बत तो निभाने का नाम है वो एक वादा जो हर मोड़ पर साथ निभाए कोई चाहे मिले या ना मिले पर वफा अमर रह जाती है

जो दिल से मोहब्बत करते हैं वो बेवफाई के बाद भी वफा करते हैं। किसी की यादों में जीना भी तो एक तरह की वफा है, जो सिर्फ मोहब्बत करने वाले समझ सकते हैं।

कुछ मोहब्बतें सिर्फ जुदाई में जीती हैं, कभी एक आंसू बनके, कभी एक कहानी बनके, पर वफा करने वाले कभी शिकवा नहीं करते, बस एक मुस्कुराहट के साथ मोहब्बत को याद करते हैं।

कोई छोड़कर भी चला जाए तो भी वफा करने वाले वफा निभाते हैं। उनके लिए मोहब्बत सिर्फ हासिल करना नहीं, किसी की यादों में जीना भी है।

मोहब्बत सिर्फ लफ्जों का खेल नहीं, ये एक रोशनी है जो दिल से दिल तक जाती है। जिसे सच में प्यार होता है वो हर मोड़ पर साथ निभाता है। जो दिल से वफा करते हैं वो फासलों से नहीं डरते। एक सच्चा आशिक सिर्फ मोहब्बत नहीं करता, वो वफा का हकदार भी बनता है, क्योंकि उसके लिए प्यार सिर्फ हासिल करना नहीं बल्कि

कुछ मोहब्बतें मिलने के लिए नहीं होती, कुछ प्रेम कहानियां जुदाई में लिखी जाती हैं। दूर रहकर भी एक दूसरे की यादों में जीना भी तो वफा है। कई बार दूरियां सिर्फ शारीरिक होती हैं, दिल तो एक सा धड़कते हैं। सच्चा प्यार चाहे जितना भी दूर चला जाए, वफा का एहसास जिंदा रहता है, क्योंकि मोहब्बत एक बार होती है और सच्ची मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती।

वफा सिर्फ उस वक्त तक नहीं होती जब तक कोई साथ हो। कई बार बेवफा होने वाले भी यादों में वफा छोड़ जाते हैं। जो सच्चा मोहब्बत करता है वो धोखा मिलने के बाद भी वफा करता है, क्योंकि उसके लिए प्यार सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक इबादत होती है। वो दुख से गुजर सकता है मगर अपनी मोहब्बत का दामन नहीं छोड़ता। बस एक ही तमन्ना रहती है कि काश वफा का सिला भी वफा होता।

वफा सिर्फ आशिकों का सिलसिला नहीं, दोस्ती का फर्ज भी होता है। दोस्त वो जो खुद भले ही टूट जाए मगर दोस्ती का वादा न तोड़े, जो अपनी खुशी से पहले दोस्तों का सोचता है वही सच्चा दोस्त होता है। दोस्ती एक मिसाल है जिसमें सिर्फ वफा का दामन पकड़ना पड़ता है। जिसने एक सच्चा दोस्त पा लिया उसने दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता जीत लिया, वो रिश्ता जो न खून का मोहताज है ना किस्मत का।

वफा सिर्फ एक वादा नहीं, एक कुर्बानी भी है। कभी किसी की खुशी के लिए खुद को भूल जाना, कभी मोहब्बत में खुद को मिटा देना, ये सिर्फ वही कर सकता है जिसे अपने प्यार से सच्ची वफा हो। मोहब्बत चाहे कमजोर कर दे, मगर वफा इंसान को मजबूत बना देती है, क्योंकि जो दिल से चाहता है वो अपने प्यार के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहता है।

वफा सिर्फ साथ निभाने का नाम नहीं, कभी कभी इंतजार भी एक तरह की वफा होती है। किसी की एक आहट पर जीना, किसी की एक मुस्कुराहट के लिए साल गुजार देना, कभी वक्त गुजर जाता है मगर इंतजार खत्म नहीं होता। वो जो सच्ची मोहब्बत करते हैं वो उम्मीद नहीं छोड़ते, क्योंकि इंतजार सिर्फ वक्त का नहीं होता, किसी के लौट आने का भी होता है।

वफा सिर्फ दुख का सबब नहीं, एक सुकून भी है। जब कोई दिल से मोहब्बत करता है तो उसके साथ एक अजब सी तसली होती है। कोई चाहे मिले या ना मिले, मगर वफा का एहसास दिल को सुकून दे जाता है। वफा करने वाले कभी शिकवा नहीं करते, बस मोहब्बत को इबादत की तरह निभाते हैं। मोहब्बत जब सच्ची हो तो वफा दुख नहीं देती, सिर्फ एक गहरा सुकून देती है, क्योंकि प्यार की असली जीत मिलने में नहीं, वफा निभाने में होती है।

ये था पहलू और गीत वफा के नाम। फिर मिलेंगे एक नए पहलू के साथ और एक नए गीत के साथ। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त किरणी, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहलू और गीत एपिसोड 16, शीर्षक था वफा। एडिट रिकॉर्ड किया भारत सपोरी ने, सहयोग राहुल अलियान व निया जैन का। स्क्रिप्ट निर्देशन एवं प्रस्तुत किया आरजे किरणी ने। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता की प्रस्तुति।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
3: पेश है कार्यक्रम दोस्ती अनमोल, एपिसोड 2। प्रस्तुत करेंगे भारत सोपोरी।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, अम्बाला का अपना रेडियो। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपुरी, लेके आया हूं कार्यक्रम दोस्ती अनमोल एपिसोड 2, जहां बात करेंगे दोस्ती की, समर्पण की। दोस्ती का मतलब है एक दूसरे के साथ खुशियां और दुखों को साझा करना। दोस्त वो है, एकदम वो भी ऐसे ही होता है जैसे हम हैं, और हमें बदलने की कोशिश नहीं करता। सच्चे दोस्त हमारे अनमोल रत्न होते हैं जो हमारे जीवन को चमकाते हैं। एक सच्चा दोस्त हमेशा साथ रहता है, चाहे जिंदगी में कैसी भी मुश्किलें आएं।

दोस्त हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना होता है। जब दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हैं, वक्त कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। जब भी जिंदगी में सहायता या प्रोत्साहन की जरूरत होती है तो हमारे अनमोल दोस्त हमेशा हमारे साथ होते हैं और अपने अनुभव साझा कर एक यादगार बनाते हैं जिसको हम जीवन भर संजो के रखते हैं।

ऐसा शायद ही कोई होगा जिसका दोस्त ना हो, जो दोस्त की अहमियत ना जानता हो। हमारी जिंदगी में ज्यादा दोस्त ना हो पर कम से कम एक दोस्त जरूर होता है, और उनके साथ समय बिताना किसको अच्छा नहीं लगता। खासकर बचपन की दोस्ती तो बहुत गहरी होती है, जिनकी यादें सदा के लिए मन में बस जाती हैं।

ऐसा नहीं कि मित्रता बनावटी नहीं होती, पर जहां बनावटी मित्रता की जाती है वो स्वार्थ से भरी होती है। कोई भी संकट आए तो सच्चा मित्र ही उस मुश्किल घड़ी में साथ देता है, सारे कष्टों को दूर करता है। प्रसिद्ध कवि तुलसीदास ने अपने एक सुंदर दोहे में कहा है, आगे के मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटलाई, जाकर चित आहे गति संभाई, उस कुमित्र परिहे रहनी बलाई। अर्थात जो आपके सामने मीठा मीठा बोलता है और मन में बुराई रखता है, आपका बुरा चाहता है, तथा जिसका मन सांप के चाल सम्मान टेढ़ा है, ऐसे मित्रों को छोड़ देने में ही भलाई है।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दोस्ती अनमोल एपिसोड 2 भारत सोपुरी के साथ FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ चाहता है, आइए इस चर्चा के साथ करते हैं समापन इस कार्यक्रम का। सच्ची दोस्ती अनमोल होती है और मानव जीवन में इसका अत्यधिक महत्व होता है। मित्र सबके लिए निसंदेह रूप से एक आशीर्वाद है जो ऊपर वाला प्रदान करता है। एक सच्चे दोस्त होने से बेहतर कुछ भी नहीं, जिसके साथ आप अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा कर सकते हैं और कभी भी जरूरत होने पर उसका समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। एक अच्छा दोस्त हमारे जीवन को अर्थ देता है और हमारी जिंदगी को सरल और खुशहाल बना देता है। इसी अच्छे विचार के साथ करता हूं समापन आज के इस कार्यक्रम का। आप अपना फीडबैक इस कार्यक्रम के बारे में दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है 7056413010। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। जल्द और किसी प्रोग्राम में भेंट करेंगे, तब तक आप खुश रहें, खुशहाल रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: यू आर लिसनिंग FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण, सुनते रहिए दिल से।
2: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
3: तुशु बोजान FM 90.0 रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी हुन। बोजान रोजू पनीन पसंदीद बर्थ।

0: छोड़ो
1: देखा दिल न तोड़ो
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जाएं साथ लेने,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: किसी के,
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के।

0: सही है बाबा।
1: अरे वाह अरे वाह अरे वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
2: ये रुक जाते तो सारे धंधे रुक जाते,
3: हाय हाय हाय।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा गीत।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
2: यू आर लिसनिंग FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। अंबाला केंट्स फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो, लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

यू आर एंजॉयिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: हम सफर जिंदगी का।
1: नब्बे आशारिया सिफर एफ एम पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

फिल्मी गीतों का ये सफर आप तय करेंगे अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। आदाब।

ये दिल लगी कहीं छूट न जाए पीछे, क्योंकि अपनी दुआओं में मैं रब से सिर्फ तुम्हें मांगता हूं। हर पल चुरा लेता हूं तुम्हें तुम्हें से। इन शामों में यहीं पे आकर तुम्हें ढूंढता हूं, तुम्हारा इंतजार करता हूं बर्फ पिघलने तक। इन मौसमों के गुम हो जाने तक कहीं ये दिल लगे ना छूट जाए। चश्मे पुर आपको समंदर लिखूं या न लिखूं, तुमसे नजरें मिला के बार बार ये ख्याल आया।

जिंदगी यूं ही गुजर गई बिना बात कहे। इस अंजमन में बातें हुई पर वो बात रह गई जो सीने में दफन।

काश कोई सुनने के लिए फिर से मुझे आवाज देता, मुझे पुकारता, मुड़ के देखता, ठहरता चंद पलों के लिए। शायद शायद मैं अपनी बात कह पाता।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
3: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
2: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
3: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
2: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।

0: सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।
1: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
2: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
1: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
2: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
1: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, एपिसोड 16, मानसिक स्वास्थ्य के लिए सचेतनता और ध्यान। ये कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वायु अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड, एडिट व निर्देशित किया भारत सोपोरी ने।
1: तेरा हर कदम जो।
2: नमस्कार, आदाब एंड हेलो। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास और जानकारी से भरपूर कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान के एक और एपिसोड में, जहां हर बार की तरह आप रूबरू होंगे हम दो बहुत स्पेशल होस्ट से, मैं लक्ष्मी और भरत दद्दू।
0: हम दादा पोती की ये जोड़ी आपको न केवल जानकारी देती है बल्कि साथ ही आप तक बहुत से सवालों के जवाब भी पहुंचाने का पूरा कार्य बखूबी निभाते हैं। इस कार्यक्रम सीरीज एपिसोड्स में हम आपको बहुत सी जानकारियां बुजुर्गों की जरूरतों से जुड़ी हुई मुहैया कराते हैं, चाहे तो वो सेहत से जुड़ी हो या फाइनेंस से, चाहे अधिकार की बात हो या फिर उनका सहारा।
2: हर एक रूप में इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन द्वारा ये पहल सभी बुजुर्गों को उनका हक दिलाने के साथ ही मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने को लेकर की जा रही है। आज का समय बदल चुका है, बहुत से घरों में बुजुर्ग अकेले रह जाते हैं, ऐसे में उनका साथ कोई नहीं दे पाता। बच्चे बाहर रहते हैं और वो पूर्ण रूप से किसी न किसी बाहर वाले पर निर्भर हो जाते हैं।
0: परंतु हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान एक ऐसा कार्यक्रम है जो बुजुर्गों का सहारा बनकर सामने आ रहा है। ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से सभी सीनियर सिटीजन तक ला रहा है वो जानकारी जो होती है उनके जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण पहलुओं से जुड़ी हुई।
2: इस कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजंस, नेशनल हेल्पलाइन फॉर सीनियर सिटीजंस, केयर गिवर्स की सही ट्रेनिंग, सेज वयोश्री योजना के साथ साथ मोतियाबिंद से जुड़ी जानकारी व समाधान, और साथ ही बुजुर्गों की सही खान पान व डाइट से जुड़ी जानकारी व एक्सपर्ट्स की एडवाइस व मंत्रालय द्वारा दे जा रही सुविधाएं भी विस्तार से सम्मिलित की जा रही है।
0: चलिए जानते हैं कि आज मेरी लाडली पोती मेरी तरह बुजुर्गों के मानसिक विकास के लिए मेडिटेशन व सचेतन से जुड़ी हुई कौन सी नई जानकारी देने वाली है।
2: गुड मॉर्निंग दादाजी, कैसे हैं आप?
0: ठीक हूँ लक्ष्मी, तुम सुनाओ कैसा रहा तुम्हारा कल का आउटिंग फ्रेंड्स के साथ?
2: अरे दादाजी क्या बताऊँ, दोस्तों से मिलकर तो अलग ही मजा आ जाता है। पहले फिल्म, फिर डिनर और ढेर सारी बातें। कितना भी बिजी रहो लाइफ में, पर हर इंसान को अपने दोस्तों से मिलने के लिए टाइम निकाल कर जरूर जाना चाहिए। सब अब ऑफिस जॉब्स में बिजी है, मगर सच में जब मिले तो यादों का पिटारा खुल गया, सारा स्ट्रेस और टेंशन मानो कहीं गायब हो गया।
0: कह तो तुम ठीक रही हो, मगर अब न तो लोगों के पास समय है और न ही अब वो अपनापन वाला समय बचा है। समय तो हम बिताते थे अपने जमाने में दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, अब तो समय बहुत बदल गया है, अब कहाँ टाइम है किसी के पास।
2: अच्छा, कैसे समय बिताते थे?
0: बस बेटा क्या बताऊं, हर शाम लोकल ट्रेन और बस में ऑफिस से आते हुए भजन या लोक संगीत गाना, तो कभी अंताक्षरी खेलना, कभी खबरों और आसपास की चर्चा करना, तो कभी एक दूसरे का दुख सुख बांटना, और तो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी अपनों के साथ कार वाला मजा ही आता था, थकान का तो पता ही नहीं चलता था ऑफिस जाते या ऑफिस से वापस आते।
2: दादाजी सच में इतना एंजॉय करते थे आप?
0: हाँ बेटा, पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा धीरे धीरे सब बस से स्कूटर और फिर कार पर सवार हो गए, सफर तो आरामदायक हो गया मगर अपनापन कहीं खो गया। अब तो सालों हो जाते हैं एक दूसरे से बात करें।
2: ये तो सही कहा आपने, अब तो टेक्नोलॉजी भी है मगर फिर भी दूरियां बढ़ गई है। फोन हाथ में है पर बात करने का समय नहीं है। गाड़ी घर में खड़ी है मगर जाने और बुलाने के लिए हजारों बार सोचते हैं।
0: कुछ साल पहले तक तो हम और हमारे सब रिश्तेदार एक दूसरे से मिल लिया करते थे आराम से, न फोन करके जाना और न ही किसी के आने से परेशान होना। अतिथि देवो भवः सिर्फ नाम के लिए नहीं था, सच में दिल से मानते थे सब।
2: हाँ दादाजी, आई टोटली एग्री विद यू। महीने सालों तक किसी से मिलते नहीं है और दूरियां बढ़ जाती है और साथ ही बढ़ जाता है डिप्रेशन और अकेलापन।
0: लक्ष्मी अब क्या बताऊं तुम्हें, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है सुबह पार्क में बैठे बुजुर्ग एक दूसरे से जब एक घंटा बात करते हैं ना तो सबसे ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उसके बाद पूरा दिन अकेलापन सा रहता है। खास तौर पर जब एक उम्र के बाद जीवन साथी भी नहीं रहता। कभी कभी सोचता हूँ कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है मगर साथ देने वाला कोई अपना नहीं होता। जीवन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। तनाव, अकेलापन और अवसाद सब एक साथ दुश्मन के रूप में बुजुर्ग शरीर में घर कर लेते हैं।
2: दादाजी, बुजुर्गों में बढ़ रही डिप्रेशन से बहुत सी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है और बीमारियां घर कर लेती हैं। इसका तो बस एक ही सलूशन है और वो हमारे देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ है।
0: अच्छा, तुम योग और प्राणायाम की बात कर रही हो?
2: हाँ दादू, इसके साथ साथ ध्यान यानी मेडिटेशन की भी बात कर रही हूँ।
0: लक्ष्मी, हमारी संस्कृति में ही बहुत कुछ है खुद के लिए जो हमें पता है, लेकिन हम शायद उसका अपने जीवन में इस्तेमाल करना या उससे अपनाना भूल जाते हैं।
2: दादाजी, क्या आप जानते हैं जो बुजुर्ग डिप्रेशन में रहते हैं उनकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, भूख भी नहीं लगती और दिन प्रतिदिन तबीयत खराब हो जाती है। मगर दादाजी, आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ कि अगर कोई बुजुर्ग ऐसा फील करता है तो सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय भी बहुत सी मदद करता है। कुछ योजनाएं ऐसी है जो बुजुर्गों के लिए वरदान साबित होती है। अक्सर इस उम्र में बहुत से लोग बच्चों से अलग शहर में रहने या जीवन साथी को खो देने के बाद बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। ऐसे लोगों के लिए मंत्रालय द्वारा काउंसलिंग भी मुहैया कराई जाती है।
0: कैसी काउंसलिंग और इससे कैसे अकेलापन या डिप्रेशन दूर किया जा सकता है?
2: ये काउंसलिंग सेशन एक्सपर्ट द्वारा कराए जाते हैं, मनोवैज्ञानिक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जैसे एक्सपर्ट्स। चलो मैं आज आपको मिलवाती हूँ ऐसे ही एक एक्सपर्ट से जो बताएंगे कि कैसे बुजुर्ग के इस अवसाद को खत्म किया जा सकता है। आप अगर चाहो तो हम आज उनके क्लिनिक चल भी सकते हैं। वो जरूरतमंद लोगों की मदद भी समय समय पर सेवा के रूप में करते हैं।
3: हमारे बुजुर्ग नहीं है लाचार, क्योंकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने खोले हैं हमारे बुजुर्गों के लिए मान सम्मान के द्वार। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने चलाई है कई योजनाएं जिससे जो है लाचार उन्हें मिलेगा सुदृढ़ आधार, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बुजुर्गों के उत्थान की योजना अटल वयो अभ्युदय योजना में कई योजनाओं का समावेश है।
4: अटल वयो का एक घटक जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों, गृहों, वृद्धाश्रमों, सतत देखभाल गृहों आदि का संचालन और रख रखाव के लिए गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।
3: दूसरा है एल्डर लाइन 14567 की सहायता से बुजुर्ग पेंशन, कानूनी मुद्दों, राशन कार्ड, आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना सहित अन्य तरह की सूचना के लिए मुफ्त जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। उम्र के आखिरी पड़ाव पर अक्सर बुजुर्ग लोगों को कोई ना कोई समस्या आती रहती है, इसके लिए है एल्डर लाइन।
4: तीसरा है जेरियाट्रिक केयर गिवर्स ट्रेनिंग। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था देखभाल कर्ताओं के क्षेत्र में आपूर्ति और बढ़ती मांग के अंतर को घटाना है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को अधिक पेशेवर सेवाएं प्रदान की जा सकें और साथ ही वृद्धावस्था के क्षेत्र में पेशेवर देखभाल कर्ताओं का एक कैडर तैयार किया जा सके।
3: चौथा है सेव, देश के वरिष्ठ नागरिक के रोजमर्रा के काम अब आसान हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए SAGE यानी सेज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन कार्यक्रम पोर्टल को वर्चुअल तरीके से लॉन्च किया है। सेज पोर्टल भरोसेमंद स्टार्टअप के जरिए बुजुर्गों की देखभाल में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने वाला वन स्टॉप एक्सेस होगा।
4: राष्ट्रीय वयोश्री योजना। राष्ट्रीय वयोश्री योजना BPL श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए एक योजना है। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। योजना के कार्यान्वयन के लिए व्यय वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष से पूरा किया जाएगा।
3: अगला है कैटरेक्ट सर्जरी स्कीम। आयुष्मान भारत के तहत बुजुर्गों का निशुल्क आंखों का ऑपरेशन किया जा रहा है।
4: भरण पोषण का अधिकार। इस अधिनियम के तहत भरण पोषण पाने का अधिकार किसे है? ऐसे माता पिता, दादा दादी, वरिष्ठ नागरिक जो अपनी आय और संपत्ति से अपना भरण पोषण नहीं कर सकते, वे इस अधिनियम के तहत भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। माता पिता की परिभाषा में जैविक, गोद और सौतेले माता पिता भी आते हैं।
3: तो उठा के इन योजनाओं का लाभ आप भी बढ़ाइए अपना सम्मान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सौजन्य से CRA द्वारा निर्मित और प्रसारित।
2: आज पता चला कि कैसे मनोवैज्ञानिक लोगों की मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करते हैं।
0: हाँ भाई, ठीक बात है। जब कोई साथ नहीं दे सकता, तब कुछ खास लोग ही आते हैं जीवन में ऊपर वाले का आशीर्वाद बनकर।
2: सच में अक्सर दादाजी खबरें देखते हैं कि बहुत से बुजुर्ग अकेलेपन का शिकार हो चुके हैं। खराब होती है सेहत से वो उबर नहीं पाते। मानसिक कमजोरी धीरे धीरे पूरे शरीर को कमजोर कर देती है।
0: लक्ष्मी, मेरे दोस्त नरेश की सेहत हार्ट ऑपरेशन के बाद काफी बेहतर होने लगी थी, मगर उससे पहले उसके बच्चे भारत छोड़ अमेरिका शिफ्ट हो गए बेहतर करियर की तलाश में। और बस अच्छे खासे नरेश को डिप्रेशन होने लगा और फिर भूख प्यास भी कम होने लगी और फिर ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं था, तो हार्ट से जुड़ी समस्याएं हो गई। अब अगर कोई उस टाइम उससे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट स्कीम्स के विषय में जानकारी दे देता तो शायद वो भी जल्दी रिकवर कर पाते। अब अगर वो अमेरिका चले जाते, बच्चे सब आसपास होते, मगर फिर भी अपना देश तो अपना ही होता है। यहाँ का मौसम, यहाँ का खाना, यहाँ की बोली, सब कुछ उसे बहुत याद आती। और तो और अवसाद फिर से एक बार उसके जीवन में आ चुका है, जिससे निकल पाना अब संभव हो भी पाएगा या नहीं पता नहीं।
2: दादाजी, क्या आप जानते हैं सेल्फ हेल्प के लिए और मन के शांत रखने के लिए बहुत जरूरी है मेडिटेशन यानी ध्यान।
0: सही कहा तुमने, मेडिटेशन यदि सही से किया जाए तो मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रांग हो जाती है। मैं व्यथित भी नहीं होता और गलत ख्याल या सोच नेगेटिव नहीं होती, और 60 के बाद वैसे भी मुझे लगता है कि रिटायरमेंट प्लान कंपलसरी हिस्सा होना चाहिए। अगर नहीं किया ध्यान तो खो सकता है सारा ज्ञान।
2: वाह दादाजी, शायरी। हाँ,
0: मेडिटेशन के साथ साथ योग भी हमारे जीवन को सही दिशा और एकाग्रता देता है यानी फोकस। तो उम्र कोई भी हो, योग और मेडिटेशन इज ए मस्ट फॉर एवरीवन।
2: आज तो आप बड़ी कमाल की बातें कर रहे हैं दादाजी। अच्छा चलो इसी बात पर आज योग और मेडिटेशन के बारे में डिटेल बताते हैं सभी को, वो भी एक्सपर्ट से बातचीत के जरिए।
0: आइए करते हैं स्वागत सहज योग मेडिटेशन प्रैक्टिशनर आर्किटेक्ट व शिक्षा विद्वान डॉक्टर आराधना जिंदल जी का FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता के स्टूडियो में।
5: FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: आपका स्वागत डॉक्टर आराधना जिंदल जी। तो अब हम चाहते हैं कि आज हम आपसे प्रश्न करें और जितने भी हमारे श्रोता हैं वो भी अपनी जिंदगी को ऐसे ही संभाले और मेडिटेशन के माध्यम से या आपके जो उत्तर आएंगे उनके माध्यम से अगर हम अंबाला की जनता को और जितने भी हमारे सुनने वाले हैं अगर हम उनकी जिंदगी में कुछ सकारात्मकता ले आए तो हम प्रश्नों का दौर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे सहज योग का अभ्यास करने का आपके लिए क्या महत्व है, कृपया विस्तार से बताएं।
5: देखिए जैसा मैंने आपको बताया है कि सहज योग का अभ्यास हमारे जीवन में हमें वर्तमान में रहना सिखाता है, हमें संतुलन में रहना सिखाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है आज की भागदौड़ की जिंदगी में। आप जानते ही हैं कि हम आज एक टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में रह रहे हैं, हर नया दिन एक नया आविष्कार, एक नई डिस्कवरी, एक नई परिवर्तन हम महसूस कर रहे हैं। और आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति एक टेंशन में, स्ट्रेस में है। और स्ट्रेस किसी भी तरह का हो सकता है, एक अपने एक जॉब का स्ट्रेस हो सकता है, बिजनेस का स्ट्रेस हो सकता है, परिवार का, स्वास्थ्य का, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है। अब देखिए जब हम बात करते हैं ना मन और बुद्धि की, जब हम बात करते हैं मानसिक और शारीरिक, क्योंकि मन बुद्धि मानसिक शारीरिक ये सब आपस में जुड़ा हुआ है, ये एक तरह से कारपेट की तरह वोवन है, ठीक है। तो जब हम ये बात करते हैं तो जब हम अंदर से ही स्ट्रेसफुल होते हैं तो हम अपना 100% कभी भी कहीं भी नहीं दे सकते, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो हमारी जॉब बिजनेस हो, हम हर जगह अनसेटिस्फाइड से, अनबैलेंस से ही रहते हैं। तो क्या होता है कि जो सहज योग ध्यान है ये जब हमें वर्तमान में रखता है ध्यान के माध्यम से, तो हम परिवार के बीच में बैठे हैं तो भी हम संतुलन में हैं, हम बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए रिएक्शंस ही हमारे संबंध बिगाड़ती हैं परिवार में, रिएक्शंस ही हमें बाहर के लोगों के साथ हमारे एक डिस्प्यूट्स क्रिएट करती हैं, और रिएक्शंस ही कहीं ना कहीं हम अपने जॉब पे करते हैं तो हमारे और हमारे बॉस के, हमारे कलीग्स के संबंधों को खराब करती हैं। रिएक्शंस एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो हर जगह एक, जिसे कहते हैं अनबैलेंस क्रिएट करती है। तो जैसे जैसे हम वर्तमान में रहना सीख जाते हैं, बैलेंस में रहना सीख जाते हैं, तो हमारी रिएक्शंस कम होने लगती हैं, हमारी प्रेम बढ़ने लगता है लोगों के साथ, हमारा एक समन्वय बढ़ने लगता है लोगों के साथ, लोग हमें प्यार करने लगते हैं, हम लोगों को प्यार करने लगते हैं, और ऐसे क्या हो जाता है एक हर जगह हार्मनी क्रिएट होने लग जाती है, एक वातावरण, एक घर में, परिवार में, एक ऑफिस के प्लेस में, बिजनेस प्लेस पर। तो ये एक सहज योग का एक बहुत बड़ा फायदा है।
0: क्या आप बता सकती हैं कि सहज योग का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है?
5: बिल्कुल पड़ता है जी। देखिए अगर हम सहज योग को समझना चाहते हैं ना तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि सहज योग है क्या। मैंने आपसे बात की थी शिमाता जी निमला देवी की, जिन्होंने सहज योग की स्थापना की 5 मई 1970 में। तो जब हम हाथ खोल के बैठते हैं और हम मांगते हैं कि माँ मेरी कुंडलनी शक्ति जागृत कीजिए, तो हमारी शक्ति ये जागृत होती है और हमारे 6 चक्रों को भेद कर हमारा ब्रह्मरंध्र खोल देती है, यानी दशम द्वार खोल देती है, हमारा संबंध परमात्मा से करा देती है, और ये हमारे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। यानी इसके बाद हमारा क्या होता है, उत्थान, आध्यात्मिक उत्थान शुरू हो जाता है। इसके बाद अगर हम जब मेडिटेशन करते हैं, सवेरे शाम मेडिटेशन करते हैं, तो धीरे धीरे धीरे हमारे जो चक्र, जो हमारी कहते हैं ना हमारी खुद की रोज दिनचर्या से हमारे बाधित हैं, उनमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो चक्र और हमारी नाड़ियाँ जो उनमें ब्लॉक्स हैं वो धीरे धीरे खुलने लगती हैं। और जैसे जैसे चक्र और नाड़ियाँ खुलने लगती हैं हमारे अंदर संतुलन आने लगता है, हमारा शरीर ठीक होने लगता है। ये आपके प्रश्न का उत्तर है कि हमारा शरीर ठीक होने लगता है। और देखिए जैसे जैसे हमारा शरीर ठीक होगा धीरे धीरे क्या हमारा मन भी अच्छा होने लगता है, हमारा मन से बना है मानसिक
0: जी।
5: तो मन हमारी लेफ्ट नाड़ी से बनता है, राइट नाड़ी से शरीर, मन और शरीर का आपस में लय स्थापित हो जाती है जब कुंडलनी शक्ति ऊपर उठती है, हमारी तीनों नाड़ियों को ले जाके संतुलित करती है, हमारे विचारों को खींच लेती है, विचारों को खींच के हमारे सहस्त्रार से बाहर निकलती है। तो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होने लगता है और धीरे धीरे हम क्या होता है एक ब्लिस फील करते हैं। हम एक परिवार में बैठे हैं, हम शांत हैं, बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे, हम वर्क प्लेस पे हैं, शांति से काम कर रहे हैं। जैसे एक देखिए समुंदर है, इसकी तुलना आप समुंदर से करिए, गहरा, जितना समुंदर गहरा होगा उसमें उतनी कम रिपल्स या बिल्कुल ना के बराबर रिपल्स है। रिपल्स कहाँ होती है, जो तट पर होता समुंदर, वो ही ज्यादा हिलता है, आगे और पीछे जाता है ना, वो शैलो होता है जो, फिर हम अपनी गहराई पाने लग जाते हैं रेगुलर ध्यान से।
0: कई बार नींद नहीं आती है जिस कारण अगले दिन हम अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। क्या तरीका होना चाहिए ताकि हमारी नींद भी पूरी हो तो अगले दिन हम अपना 100% दे सकें?
5: ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि आज की डेट में हर व्यक्ति स्ट्रेसफुल है
0: जी।
5: मतलब मुझे तो लगता है कि भाई मैंने तो कोई ऐसा व्यक्ति देखा नहीं कि जिसके अंदर स्ट्रेस नहीं है, और जो कहता भी है वो भी शायद कहीं ना कहीं ये बात असत्य बोल रहा है
0: जी।
5: तो जब हम एक बार अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हैं, यानी हमारी कुंडलनी शक्ति जागृत होती है, उसके बाद कुछ चीजें हैं जिनको हम कर सकते हैं। जैसे एक पानी पैर क्रिया होती है, इसको हम फुट सोक कहते हैं। हमारे भारतीय जो हमारा विज्ञान है, ज्ञान जो भी कह सकते हैं, उसमें भी बताया है कि रात को सोने से पहले अगर हम दोनों पैर को अपना पानी में डालें और एक मुट्ठी भर नमक डाल दें उसमें, क्योंकि मुट्ठी जो नमक होता है ना, ये हमारा गुरु तत्व होता है। ये क्या करता है, हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी, जितनी भी बॉडी में नेगेटिविटी होती है पूरे दिन की, वो खींच लेता है, हमारे स्ट्रेस को, हमारे विचारों को खींच लेता है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, हमने एक बकेट में इतना पानी लेना है कि जितने हमारे एंकल्स डूब जाएं, थोड़ा सा नमक डाल देना, समुद्री नमक, और अपने दोनों पैरों को सिर्फ 10 मिनट डाल के हमने ध्यान उसी मुद्रा में करना है, उसी स्थिति में करना है। सिर्फ सोने से पहले आप इतना ही कर लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि मैं सारी सारी रात तारों को, अगर मैं, हम छोटे थे ना तो हम बाहर सोते थे तो तारों को गिनती रहती थी मैं, मुझे याद है।
0: यानी कि आप जागती रहती थी?
5: हाँ, जागती रहती थी ना। तो लेकिन सहजयोग में आने के बाद धीरे धीरे ऐसा हुआ, 1 सेकंड तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा टाइम है, 1 पल में मुझे नींद आती है।
0: बहुत अच्छी बात है, और ये मेरा व्यक्तिगत प्रश्न इसलिए था क्योंकि आज के डेट में हर कोई स्ट्रेस से भरा है, और जब हम सोने जाते हैं तो शायद हम अच्छे से नींद नहीं कर पाते हैं, जिसका असर हमारी दिनचर्या और हमारी जिंदगी पे पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न का जवाब देने के लिए।
5: सपोरी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये मौका दिया एक अपनी बात को कहने का, व्यक्त करने का और श्रोताओं तक पहुंचाने का, आप जो आपका रेडियो वितस्ता है। मैं एक ही बात कहूंगी, आप ध्यान करें सवेरे शाम 5-5 मिनट मिनिमम, ठीक है, आप ध्यान करिए। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर आप ध्यान करेंगे तो आप ना केवल मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आप आध्यात्मिक और आप इमोशनली भी आप बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाएंगे। तो यही मेरा एक संदेश है आप सभी लोगों के लिए, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।
3: बुढ़ापा अभिशाप नहीं, बुढ़ापा बनेगा उत्सव जिंदगी का। अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। कहा जाता है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है, उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों को होती है कई तरह की शारीरिक समस्याएं। ऐसे में गरीब असहाय वरिष्ठ नागरिकों के पोषण के लिए सरकार ने उठाए हैं कदम। अटल वयो अभ्युदय योजना दिलाती है बुजुर्गों को सही पोषक भोजन। लगभग 50,000 बुजुर्गों को लाभ देने के लिए 39.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिससे होगा हमारे वरिष्ठ जनों का अभ्युदय। साथ ही सहारा बनी वरिष्ठ जनों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के हमारे सम्माननीय वरिष्ठों को मिलेंगे सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र, जैसे व्हीलचेयर, हियरिंग हेड, वॉकर, जिससे खिल उठी हमारे बड़ों की खोई मुस्कान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: देखा दादू, कितना जरूरी इस लाइफ को सही ट्रैक पर चलने के लिए मेडिटेशन और योग, क्योंकि अगर मस्तिष्क और मैं शांति से काम करेंगे तो जीवन की गाड़ी ठीक ठाक स्पीड और माइलेज के साथ चलेगी।
0: क्या बात, तुम तो बिल्कुल इंजीनियर की तरह बात कर रही हो, वो भी लाइफ की इंजीनियरिंग के बारे में।
2: थैंक्स दादू, होपफुली आप बताओगे अपने सभी साथियों को कि अकेलापन का सबसे अच्छा साथी योग और मेडिटेशन है।
0: जल्द ही अपने दोस्तों की बैठक करता हूँ और उसमें ये सारी जानकारी साझा करूँगा कि कैसे इस बहुत बड़ी मगर अनदेखी प्रॉब्लम को आसानी से हल किया जा सकता है।
2: दादू साथ ही और भी जानकारी दे दीजिए उन्हें योजनाओं के बारे में, याद है ना?
0: बिल्कुल याद है। नंबर एक, वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम IPSRC। ये कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों की भलाई के लिए एक समग्र

0: यदि कोई वरिष्ठ नागरिक परेशानी में हो तो वो 1-4-5-6-7 पर कॉल कर सकते हैं।
1: नंबर 3, जेरियाटिक केयरगिवर्स प्रशिक्षण। वरिष्ठ नागरिकों की विशेष देखभाल के लिए प्रशिक्षित केयरगिवर्स की आवश्यकता होती है। इस कार्यक्रम के तहत केयरगिवर्स को बुजुर्गों की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक देखभाल करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये कदम बुजुर्गों के लिए जीवन को बेहतर बनाने में सहायक है।
0: नंबर 4, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन सेज। ये पहल वरिष्ठ नागरिकों की सेवाओं और उत्पादों के लिए नए अवसर प्रदान करती है। सेज के माध्यम से निजी और सरकारी संगठनों को वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाता है।
1: नंबर 5, राष्ट्रीय वयोश्री योजना RVY। इस योजना के तहत गरीब वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण जैसे चश्मे, श्रवण यंत्र और वॉकर मुफ्त में प्रदान किए जाते हैं। ये उनके जीवन को आत्मनिर्भर और सुखद बनाने में मदद करता है।
0: नंबर 6, मोतियाबिंद सर्जरी कैटरेक्ट सर्जरी। मोतियाबिंद बुजुर्गों में आम समस्या है। इसके लिए मुफ्त या सस्ती दरों पर सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ये पहल उनकी दृष्टि क्षमता को बहाल करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: नंबर 7, बुजुर्गों को भरण पोषण का अधिकार। भारत सरकार ने बुजुर्गों के लिए भरण पोषण का अधिकार सुनिश्चित किया है। इसके तहत परिवार को उनके भरण पोषण का ध्यान रखना आवश्यक है। यदि परिवार ऐसा करने में असफल रहता है तो बुजुर्ग कानूनी सहायता ले सकते हैं।
0: इन योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान और सहायता प्रदान की जा रही है। हमें भी उनके प्रति अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए और उनके जीवन को खुशहाल बनाने में योगदान देना चाहिए।
1: वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान समाज की पहचान। आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, एपिसोड 16, मानसिक स्वास्थ्य के लिए सचेतनता और ध्यान। इस कार्यक्रम में लक्ष्मी के किरदार को आवाज दी आरजी किडनी ने, भरत ददू के किरदार को आवाज दी भारत सोपोरी ने, और इसमें आपने वॉइस बाइट सुनी डॉक्टर आराधना जिंदल जी का, जो मेडिटेशन और सहज योग एक्सपर्ट है। उनका बहुत बहुत आभार। इस कार्यक्रम को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्योदय योजना पर आधारित तैयार किया गया था। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड, एडिट व निर्देशित किया भारत सोपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
1: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
0: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
1: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
0: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।
2: सही रास्ता, सही चुनाव। सनातन धर्म कॉलेज अम्बाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
3: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
2: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
3: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
2: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार

0: प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700 प्लस डिस्टिंक्शंस, 45 प्लस स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स, सबने आपके जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
1: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
0: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
1: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
0: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।

0: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
1: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
2: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
1: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
2: www.sdcollegeambala.ac.in।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में जलती रेत में लेटे कहता हूँ, सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पी के कहता हूँ, गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ। -30 डिग्री में राइफल टांग के टहलने निकलता हूँ। आदमजात की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता। आदमजात की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद में तन्हाई का जाफा लाता है, मुझे राखी बांधने बस लिफाफा आता है। अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया, अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया। मेरा बाप मेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया। मेरी बीवी सिंदूर लगा के भी लगती कवारी है। मैंने सहूलत का गला घोटा, जरूरत नकारी है। हाँ मैं निर्दयी हूँ। मैं अपने उजड़ते घरों आंगन से नहीं डरता, मगर मैं डरता हूँ। हाँ मैं भी डर जाता हूँ। मैं डरता हूँ नफरत की आग से, मजहब के चोलों से, सियासत के सांप के कातिल सपोलों से। मैं हवा में फैली अफवाह से डर जाता हूँ, मैं सैलाब गुमराह से डर जाता हूँ। मुझे डर है मेरी सरजमी को अपने उजाड़ेंगे, खून की मोहर से खुद को संवारेंगे। मैं मजबूर हूँ, कमज़ोर हूँ, मैं खुद से लड़ नहीं सकता। अपनों की तरफ बंदूक लेकर मैं बढ़ नहीं सकता। मैं बस बोल सकता हूँ। मैं बहरों की तरह गूंगा, तुम्हारे कान पर है हाथ मगर फिर भी मैं बोलूंगा। हजारों साल की ये सभ्यता को गौर से देखो, सुनो आवाज तुम मन की, जरा गहराई से सोचो। तुम्हें क्या सच में लगता है कोई अपना पराया है, हुआ पैदा है जो इस देश में बाहर से आया है। सभी का खून है शामिल, लगी कुर्बानियां सबकी, कि हमने हड्डियों को जोड़कर भारत बनाया है। तुम्हें अगर इश्क है इससे तो इसको दिल से अपनाओ। कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ। धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: सुनिए और सुनाइए, रेडियो विदस्ता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।
2: सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 MHz पर, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
1: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो इतस्ता हम सफर जिंदगी का, और उम्मीद करते हैं कि आप इस समय सुन रहे हैं हमारे प्रसारण, और कुछ ही क्षणों में शुरू होने जा रहा है कार्यक्रम राम राम हरियाणा, जो लाइव होता है हरियाणा के ज्यादातर सामुदायिक रेडियोज पर। और इसमें हम बात करते हैं हमारी उन्नति की, हमारे गाँव की, हमारे शहर की, हमारे कस्बे की। अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप जरूर हमें कॉल करें। हमारे इस प्रोग्राम का नंबर है 8816904904, नंबर एक बार फिर 8816904904। आप इस नंबर पर कॉल करके अगर आपने कोई उत्कृष्ट कार्य किया है उसके बारे में बता सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई हरियाणा सरकार तक आप कोई अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो आप जरूर हमें कॉल करें इस नंबर पर, क्योंकि इस कार्यक्रम में हमारे पास हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि भी होते हैं। हमारी कोशिश है कि हम आपके इस मुश्किल घड़ी में काम आ जाएं। तो बने रहिए हमारे साथ, कुछ ही क्षणों में शुरू होने जा रहा है कार्यक्रम राम राम हरियाणा।

0: भरत जी, आपके पास मेहमानों का परिचय आ गया क्या?
1: तो इच्छु भोजन नमत अशारिया सिफर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी हूँ।
2: कहाँ?

0: सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी सकुशल होंगे और बहुत अच्छे से होंगे। पटल पर जितने भी मेरे दोस्त हैं उन सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, अंबाला कैंट, FM 90.0 MHz से, और हरियाणा के सभी श्रोताओं का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं इस कार्यक्रम में। और यह कार्यक्रम है राम राम हरियाणा, जो आप सभी देखते हैं सोशल मीडिया पर और सुनते हैं हमारे रेडियोज पर हर सोमवार से शुक्रवार तक सुबह दिन में 4 बजे से 5 बजे तक। हमारी कोशिश है इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने गांव के बारे में, अपने शहर के बारे में, कस्बे के बारे में जाने और लोगों तक आपकी बात पहुंचाए। अगर किसी ने कोई अच्छा कार्य किया है उस बात को भी हम लोगों तक पहुंचाए, ताकि लोगों को प्रेरणा मिले और वो भी कुछ अच्छा करके दिखाएं। जब हमारा मोहल्ला, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा कस्बा सुदृढ़ होगा, साफ सुथरा होगा, तरक्की करेगा, तो हमारे देश भी तरक्की करेगा। इससे हमारा भारत देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि भारत देश जो है वो बना है गांव से। और हम शुरुआत करते हैं ग्राम लेवल पर और गांव के स्तर से हम शुरू करते हैं। और मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी का, गुरविंदर जी का, प्रीतम जी का, और आज के मेहमान जो हमारे साथ जुड़ेंगे सुनील शर्मा, ग्राम सचिव मंगत राम जी और अमित चौधरी जी, सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज आप सभी को और सभी श्रोताओं को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमारा कार्यक्रम तब कंप्लीट होता है, पूरा होता है, जब आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं, आप कॉल करते हैं। अगर आपने अपने जीवन में कोई उत्कृष्ट कार्य किया है, या अगर आपके पास कोई समस्या है, किसी समस्या का आप समाधान चाहते हैं, आप इस कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये बात हमारे पास सीधा हरियाणा सरकार तक पहुंचेगी, क्योंकि हमारे पास इसमें हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि भी जुड़े होते हैं। और इस कार्यक्रम का नंबर है 88 16 904 904। नंबर एक बार फिर बता देता हूं, 88 16 904 904। आज है 28 मई 2026 बृहस्पतिवार, अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष द्वादशी 2083 विक्रम संवत। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरे साथ बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे, और इंटरनेट की कमियों और खामियों के दौरान भी हम अपना अच्छा रास्ता बनाएंगे और अपनी बात को स्पष्ट रखेंगे, दिल से रखेंगे, और बिना किसी लाग लपेट के हम अपनी बात को रखेंगे। एक बार फिर सभी को मेरा राम राम। वीरेंद्र सर,
1: सबको राम राम। राम राम हरियाणा, और राम राम हरियाणा जब हम कहते हैं तो राम राम हरियाणा का जो स्वर है, मधुरिम स्वर, वो सब तक पहुंचाने का हमारे पास यूं कहिए कि दोहरे तिहरे माध्यम हैं। हम अपने अपने अपने रेडियो स्टेशंस के माध्यम से, रेडियो वितस्ता अंबाला से, प्रीतम जी का अपना रेडियो, रेडियो अरावली, FM भारती और रेडियो ग्रामोदय, इन सब सामुदायिक रेडियो स्टेशंस पर आपकी, यानी जो श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं अपनी बात कहने के लिए, उनकी आवाज पहुंचती है। जो हमारे मेहमान यहां होते हैं इस कार्यक्रम में, उनकी आवाज पहुंचती है। और इसके अलावा फेसबुक के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान के फेसबुक प्लेटफॉर्म पर, मेरे अपने पन्ने पर, और जो हमारे स्टेशंस हैं उनके भी जो पेजेस हैं, प्रोफाइल्स हैं, वहां पर भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं, जुड़ सकते हैं। नई चीज जो हमने इसमें जोड़ी है, जिसको अभी बहुत दुरुस्त और तंदुरुस्त किया जाना शेष है, वो है कि हमारा ये कार्यक्रम, भारत जी, हमारी जो एंड्रॉयड ऐप है जो बन गई है, प्ले स्टोर पर चल गई है, और उसकी टेस्टिंग एक प्रकार से चल रही है। राम राम हरियाणा नाम से प्ले स्टोर पर उपलब्ध ऐप को भी आप अपने फोन पर डालेंगे, तो जहां रेडियो नहीं पहुंच रहा और केवल ऑडियो सुनना चाहते हैं आप, मान लो आपको मेरी और भारत जी की सूरत नहीं निहारनी, प्रीतम जी को नहीं देखना, तो भाई कोई बात नहीं, आप हमें सुनना तो जरूर चाहोगे, हमारी आवाज आप तक पहुंचेगी, उस ऐप के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज हम कार्यक्रम की शुरुआत, भारत जी, ब्रजभूमि में चल के करेंगे।
0: बहुत अच्छा।
1: ब्रज की जो परिक्रमा चल रही है इन दिनों, कल बताया हमें जितेश जी ने, एक श्रोता ने भी बताया कि हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु वो उस परिक्रमा में शामिल होते हैं, और उसका एक हिस्सा क्योंकि हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा के गांव से होकर के बहुत सारे श्रद्धालु और तीर्थयात्री गुजरते हैं। आज हम बात करेंगे उन तीर्थयात्रियों के लिए हमारी सरकार ने क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं और उन व्यवस्थाओं में अगर कोई कमियां हैं तो श्रोता भी हमें जुड़ करके बता सकते हैं। हमारे साथ BDPO होडल अमित जी जुड़े हुए हैं। अमित जी अगर कैमरा ऑन कर लेंगे तो उनसे बतियाने में और मजा आएगा। और कैमरा और माइक्रोफोन अमित जी आप अपना ऑन कर लें। इधर सौरभ से मैं कहूंगा कि जो भी मेहमान जुड़े हैं और उनको आपने स्टूडियो में मान लीजिए नहीं जोड़ा है तो उनको स्टूडियो में आने दीजिए, जितने चेहरे यहां रहेंगे उतना बेहतर रहेगा। अमित जी आप हमें सुन पा रहे हैं?
0: सर जब तक अमित जी जुड़ते हैं आप जी जी तब तक आप मुझे वो एड्रेस बताइए प्लीज। प्लीज अमित जी आप बोलिए।
1: नहीं अमित जी का माइक म्यूट है, जरा एक बार बात करिए। गुरविंदर जी अमित जी को ऑन करने के लिए कहिए, कैम माइक उनका ऑन नहीं है। और इस बीच जो दूसरे हमारे मेहमान हैं पलवल वाले मित्रों को ही ऐड नहीं कर रखा। सौरभ कहां हो भाई, क्या कर रहे हो? मंगत राम जी जरा अपना परिचय करा दीजिए सबसे पहले, क्योंकि आपका परिचय गुरविंदर जी तो करा नहीं रहे, आप ही करा दीजिए स्वयं।
2: जी सर नमस्कार। सर
1: नमस्ते।
2: सर मेरा नाम मंगत राम और मैं ग्राम सी हूँ सर, नीलोखेड़ी ब्लॉक में।
1: नीलोखेड़ी में कौन कौन से गांव हैं आपके पास?
2: मेरे पास सर पूजम है, सिद्धपुर है और तखाना है।
1: पूजम, सिद्धपुर और
2: तखाना खालसा।
1: तखाना खालसा, चलिए। और हम इंतजार कर रहे हैं अमित जी, अमित जी के जुड़ने का, अमित जी का चेहरा हमें दिखना शुरू हो और हम उनकी आवाज भी सुन पाए। ये संभव नहीं हो पा रहा, जरा इस बात की चिंता कर लें हमारे साथी सहयोगी। बताइए आप किस आज सरपंच कौन से गांव के जुड़े हैं भाई मंगत राम जी?
2: पूजम के सर, ये सुनील शर्मा।
1: पूजम के सुनील शर्मा जी, सुनील भाई आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
3: नमस्कार सर, थैंक यू।
1: जरा एक बार तब तक पूजम की बात हो जाए, पूजम में क्या हो रहा है, क्या कर दिया आपने पूजम के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब तक, जरा एक बार आप बताना शुरू करिए।
3: सर पूजम गांव में जब से मैं सरपंच बना हूँ मैंने तो स्वागत की जो व्यवस्था पे पूरा ध्यान दिया है।
0: सुनील जी
3: गांव में
0: सुनील जी एक मिनट रोकता हूँ, अगर आपके पास कोई रेडियो ऑन है या कोई मोबाइल ऑन है उसका वॉल्यूम आप जीरो करें क्योंकि आपकी वॉइस जो है वो इको हो रही है। साथ में सुनील जी आपका स्वागत करता हूं और ये भी बता देता हूं कि आज इस कार्यक्रम में आप हमारे मेहमान हैं। आप जितना खुल के अपने गांव के बारे में बताएंगे, क्या क्या आपने अपने गांव में आज तक सरपंच होने के बाद क्या क्या किया, ताकि हम आपके गांव में बिना गए हुए आपके गांव की रूपरेखा अपने मन में तैयार करें। तो स्वागत है आपका सुनील शर्मा जी, आप शुरू करें।
3: सर जब से मैं सरपंच बना तब से मैंने गांव में सबसे पहले तो सफाई व्यवस्था पे ध्यान दिया है और उसके बाद मैंने सारे गांव में लाइट लगाई है, मतलब गांव में अंधेरा रहता था तो मैंने पूरे गांव में और सड़क के ऊपर लाइट लगाई है। लोग सुबह से सैर करते हैं और भी चोरी हुई नहीं, लाइट लगने के बाद ना चोरी हुई। उसके बाद फिर मैंने कैमरे लगवाए, गांव के जो चौक है ना मैंने तकरीबन सारे कवर कर दिए, गांव के एंट्री से कौन बंदा बाहर जा रहा है कौन अंदर आ रहा है और स्कूल में और जहां भी मेरे चौक है गांव में पूरी एंट्री के अंदर गांव के अंदर मैंने कैमरे लगवाया सर। और पानी जो पीने का है उसकी मैंने पूरी व्यवस्था पाइप लाइन को अच्छे तरीके से रख रखा है, रिपेयर करके सब पूरे सिस्टम से पाइप को भी पूरी रिपेयर कराई है और जो नई डली है नई पाइप डलवा दी सर। और जो कुछ सड़कें थी मेरे गाँव की जो कच्ची थी वो मैंने सारी पक्की कर दी है और गांव में कहीं भी पानी नहीं खड़ा होता और गांव में मतलब बीमारी बहुत कम है, मेरे गांव में इतनी बीमारी नहीं है और गांव पूरी तरह संपन्न है। पेड़ पौधे बहुत ज्यादा लगाए मेरे गांव के अंदर, वृक्ष भी लगाए हैं गांव में मैंने और गांव में मैंने सफाई के लिए ईर्ष्या चालू करी है सर, जो घर घर से कूड़ा उठाती है तो घर घर जाके बंदा लगाया उसके ऊपर जी। और सरकार द्वारा मुझे ई लाइब्रेरी और जिम दी गई है वो मैंने को मेंटेन कर रखा है, उसे एक बंदा लगा रखा है और वो व्यक्ति वहां ड्यूटी देता है और बच्चे जिम करते हैं और ई लाइब्रेरी में आते हैं सर।
0: सुनील जी, जो आप जिम कराते हैं अपने गांव में, क्या उस जिम कराने के कुछ आप चार्जेस लेते हैं या आपने वो गांव वालों के लिए रखा हुआ है, जो भी कोई आए उसकी जो जो उसका क्या कहूं मैं, जो उसका ख्याल रखता है वो आप अपने जो व्यक्ति आपने रखा है वो करते हैं, उसकी साफ सफाई का जो काम है वो कौन करता है?
3: सर उसके लिए मैंने कोई चार्जेस हम लेते नहीं किसी का।
0: आपको रुकना होगा,
3: उसके लिए मैंने एक
0: सुनील जी रुकना होगा, कॉल एक आ रही है। हेलो, कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
4: सर मैं ममता बोल रही हूँ, अपना रेडियो से कट कैसे हो गया सर?
0: हाँ जी, हाँ जी जी, बताइए ममता जी, आप तो हमारे कार्यक्रम का अभिन्न अंग है, बताइए आज क्या बताना चाह रही हैं?
4: सर दादरी में बारिश आ रही है।
0: अच्छा, बहुत अच्छी खबर दी आपने, यहाँ तो बहुत गर्मी है।
1: ये तो सचमुच अच्छी खबर सुना दी आपने बबीता जी,
0: और यहाँ भी ठंडक आ गई सर।
1: नहीं, ठंडक तो हमारे यहाँ तक तो पहुंची हुई है, पता नहीं आपके यहाँ के नहीं। यहाँ हमारे यहाँ सुबह आज हाँ। हवा में ठंडक थी हल्की हल्की नीलोखेड़ी में और करनाल में, और मौसम विभाग ने भी पूर्वानुमान दे ही रखा था
0: जी जी,
1: तेज आंधी भी आ सकती है हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में, बरखा बहार भी गर्मी पर प्रहार करने आ सकती है। चलिए बहुत बढ़िया
0: वीरेंद्र सर,
1: ममता जी और
0: वीरेंद्र सर, मैं कहता हूँ कि हमें ऐसे ही श्रोता चाहिए, ये जरूरी है कि वो सिर्फ अपनी ही बात रखें, और इन्होंने हमें यहाँ स्टूडियो में बैठ के एक ऐसी जानकारी दी जिससे मन को थोड़ी सी राहत मिली, गर्मी में थोड़ा सा फर्क पड़ा। ममता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी।
1: गुरविंदर जी मैं आपको रोक रहा हूँ एक बार जी, गुरविंदर सिंह जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या?
5: हाँ सर,
1: चलिए शुक्रिया। हाँ अमित जी का मैं इंतजार कर रहा था इतनी देर से, अमित जी माइक भी ऑन कर लीजिए, शुक्रिया। आवाज आ रही है आप तक? अमित जी ऑडियो मिल रहे हैं? नहीं, अमित जी का ऐसा लगता है कि वो माइक के साथ जुड़े हुए नहीं है, पहले टेस्ट करना चाहिए था।
5: दोबारा बात करता हूँ।
1: हाँ विद माइक जुड़े वो समस्या है कुछ ना कुछ उनके ब्राउजर में ऐसा लगता है। चलिए हम वापस वहीं चलते हैं, कहाँ चलें, पूजम चलते हैं, और ममता जी अगर लाइन पर हैं तो ममता जी आपने कुछ आज के कार्यक्रम में कोई नई बात जोड़नी है क्या बरखा बहार के अलावा? वो जोड़ दीजिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। मुझे लगता है ममता जी डिस्कनेक्ट हो गई बीच में। अमित जी प्रयासरत हैं कि उनका ऑडियो चल जाए, और हमारी बहुत रुचि है जानने में कि ब्रज क्षेत्र में जो यात्रा चल रही है
0: सर,
1: होडल में और उनके आसपास के क्षेत्र में सर, वो क्या कर पा रहे हैं?
0: कॉल आ रहा है। हेलो,
1: स्वागतम कॉलर जी का स्वागतम।
0: हेलो
1: क्या कह रहे
0: हैं कि देखिए बारिश कितनी तेज आ रही है। ठीक है ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, इस समय हम स्टूडियो में हैं, हमने आपकी जानकारी जो है वो ले ली। और कुछ कहना चाहेंगे बारिश के बगैर? हाँ जी हाँ जी, आप बारिश एंजॉय करें, तब तक हम अपने जो मेहमान है उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।
1: यहाँ मैं सरपंच पूजम से ये जानना चाहता हूं कि गांव में सफाई का स्तर ठीक रखने के लिए और बेहतर करने के लिए सरपंच पूजम ने कुछ ऐसा भी किया है क्या जो अगल बगल पड़ोस के किसी गांव से नहीं हो रहा हो? कोई लीक से हटके काम किया है क्या? अगर कुछ लीक से हटके किया है तो कैसे किया, आइडिया कहां से आया था, और उसमें सफलता कितनी मिली, जरा खोल के बताइए, खेलकर बताइए।
3: सर मैं जैसे कई एक तो गांव में घूमा कुछ साइड में गया, तो मैं जहां भी जाता हूँ तो कोई अलग चीज देखता हूँ, कोई दिमाग में भी कोई अलग चीज गांव के लिए करें।
1: बहुत बढ़िया,
3: तो भी जिससे गांव बढ़े और मतलब की डेकोरेशन आए गांव के अंदर बढ़ती, एंट्री पे ना कुछ अच्छो। तो मैंने जैसे पाइप लाइन दबाने शुरू करे हैं, जैसे ना नाले के अंदर भी पाइप दबाने शुरू कर दिए हैं, जहां जहां ऊंचाई है ना भाई वहां से रेन टैक रहता है, तो मच्छर नहीं होते, और क्या होता है कि दो फुट गली भी खुल जाती है उससे, तो पानी मेरा गांव थोड़ा ऊंचे पे है, तो पानी की मैंने पाइपलाइन वो जैसे भी नाली की है ना जो पाइपलाइन दबानी शुरू कर दिया, तो मैं गांव के अंदर वो नाली की पाइपलाइन जो दरवाजा डाल देते हैं, कई बंदे बीच में भी कह देते हैं हमारे बार क्या क्या मत डालो भाई ये रुक जाएगी, तो हम वहां रोक लेते हैं उसको। फिर हम कुछ और सोचते हैं इसके अंदर लोहे का जाल लगाया जाए या कुछ और किया जाए। और जो ई रिक्शा है इसको मैं प्रॉपर तरीके से चला रहा हूँ, इससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। घर घर में जो गांव में कचरा डालने जैसे कहीं दूर दूर डाल के आते थे, एक तो घर से बंदा कचरा उठाता है और वो मैं 4-5 किलोमीटर में उसको डंपिंग करा देता हूँ दूर ले के ना, उससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिला है। और मतलब गांव में कूड़ा करकट नहीं फैलते।
6: तो एक ई रिक्शा चला रहे हैं आप, एक से ज्यादा है, ई रिक्शा कितनी है आपके पास?
3: एक ही ई रिक्शा चल रही है सर।
6: एक ई रिक्शा है उससे आप काम कर रहे हैं, वो कौन से फंड से ली थी आपने
3: सर? ये मैंने इससे खरीदी एफएफसी फंड से।
6: चलिए एफएफसी से लिया। और ये जो आपके सचिव महोदय हैं भाई, सेक्रेटरी साहब,
2: हाँ जी सर,
6: कब से इन गांवों को देख रहे हो आप जहां आप हो पूजम समेत?
2: पूजम में सर अभी 10-15 दिन हुए हैं।
6: नवे नवे आए हो?
2: जी सर।
6: तो ये पूजम की सरकार बढ़िया चल रही?
2: देखते हैं सर अभी तो चलेगी।
6: चलेगी नहीं मतलब अब तक, अबे 8-10 दिन में तो मेरा पार्टी जा रहे हैं। आज की तारीख में, आज की तारीख में पूजम की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कोई ऐसा बड़ा सवाल बताओ पंडित जी जिसका समाधान आप चाहते हैं सरकार से, विधायक जी के माध्यम से, हम लोगों के माध्यम से, आपको लगता हो कि भाई यो काम और हो जाए जी सा आजेगा।
3: सर मुझे, सर मेरे लिए दो समस्याएं हैं सबसे ज्यादा। एक तो मेरा स्टेडियम है, सड़क के ऊपर मैंने 5.5 किलो एकड़ का ना स्टेडियम छोड़ रखा है, नीलो खड़ी के पास है, बिल्कुल क्लोज है वो, तो वो मैंने छोड़ रखा है, वो बन जाए मेरा। और एक मेरे शमशान घाट में बहुत बड़ी दिक्कत है, मतलब शमशान घाट का एरिया बड़ा है और उसको मुझसे कवर नहीं हो रहा वो।
6: अच्छा, जो शमशान घाट की सौंदर्यीकरण या उसको व्यवस्थित करने की जो योजना आई थी उसमें जो पैसा आया वो आपने लगा दिया और काम नहीं बना, ये कह रहे हो? क्यों सुनील जी, यही कह रहे हो कि कुछ और है मामला?
3: उस योजना में मेरे को 4 लाख की ग्रांट मैंने लगाया।
6: नहीं, वो शिवधाम योजना में तो सरकार ने जो तय किया होगा, कोई स्टैंडर्ड नॉर्म्स होंगे, उसी हिसाब से पैसा आया होगा। ये बीडीपीओ साहब,
3: नहीं सर, उसमें पता क्या था, वो पहले एस्टिमेट।
6: हाँ बताइए बताइए। भाई सेक्रेटरी साहब, इनका स्टेडियम कैसे बन सकता है, आपको क्या समझ में आता है, कहां से आएगा पैसा?
2: पैसा सर ब्लॉक समिति से भी आ सकता है।
0: चलिए एक कॉलर का इंतजार कर रहे थे, एक कॉलर है। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं?
7: प्रजापति गांव से बोल रहा हूं सर।
0: हाँ जी, हाँ जी प्रजापति जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? आप जरा,
7: हेलो,
0: हाँ बोलिए, अभी हमें समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए
8: सर।
7: चरखी दादरी
6: आ चुकी है सर, ये बरसात का स्वाद तो चरखी दादरी वाले ले रहे हैं और स्वाद नहीं ले रहे, हमें सुना के बता के हमें चिड़ा और रहे हैं कि देखो मारे बरसन लाग रहा है, आरे को नहीं आया। मैं अमित जी से कहूंगा, एक क्षण के लिए रुकिएगा श्रोता जी। अमित जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो स्टूडियो का नंबर लिख लीजिए, अभी भारत जी बोलेंगे, स्टूडियो आप फोन पर जुड़ जाइए, अगर यहाँ आप हमारे साथ आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे किसी कारण से अपने माइक्रोफोन को और आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो अभी नंबर बोलेंगे। वैसे तो ये नीचे भी चल रही है पट्टी
0: जी,
6: मैं भी बोल देता हूं और एक बार भारत जी बोलेंगे, 88-16-904-904 ये नंबर नोट कर लीजिए और आप फोन से हमारे साथ जुड़ जाइएगा इस कॉलर के तुरंत बाद। आप डायल कर लें इस नंबर पर, स्टूडियो आपको कनेक्ट कर देगा, आपसे बात हमारी हो जाएगी। राम जाने ये तकनीकी दिक्कत क्यों है आज और आपको हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे, कितना अच्छा होता अमित जी से हम सीधे बात उस तरह कर पाते, यानी इसी स्ट्रीम यार्ड के माध्यम से।
0: जी अमित जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है?
6: अमित जी को हमारी आवाज पक्का मिल रही होगी, लेकिन अमित जी तक हम नहीं पहुंच, उनकी आवाज हम तक नहीं आ रही।
0: नहीं वो
6: गुरविंदर सिंह जी, आप गुरविंदर सिंह जी एक बार अमित जी फोन, आप यहाँ से स्टूडियो से अदृश्य होकर और अमित जी से कहिए कि वो हमें फोन कॉल कर लें, वो बेहतर होगा मुझे लगता है। और हमने तो सोचा था आज ब्रज की बात होगी और हम ब्रज की फीलिंग भी ले लेंगे, लेकिन हमें उलझा के रख दिया आप लोगों ने दादरी की बरसात में, कमाल हो गए। चलिए शुक्रिया आपका श्रद्धा जी, आपने हमें दादरी की बरसात का जिक्र कर दिया। दादरी आड़े हो जी से लो, अरे भाई जी थारे जी से पूरे हो जाए, मारे दो रबे जी, हम भी बादल की बाट देखा हम भाई। पूजम पूजम के आसमान में तो बादल हैंगे नहीं सुनील भाई?
3: नहीं नहीं सर, कोई बादल नहीं आपके पास ही भाई, बिल्कुल। ये आपके ऑफिस से, आपके ऑफिस से ना किलोमीटर पड़ता है सर।
6: सवेरे तो खाकड़ सा था, एक बार लग रहा था कुछ होगा, हवा भी ठंडी चल रही थी।
3: हाँ बिल्कुल, हवा चल रही थी लेकिन मौसम एकदम गर्मी से ज्यादा, इसमें लू ज्यादा चल रही है दिनों में।
6: आपके पास जमीन कितनी है
3: सर? जमीन मेरे पास है 70 किले के आसपास है पंचायत के, और 7.5 किले मैंने मंडी मेरी है, 7.5 एकड़ नीलो बड़ी जो मंडी बनी है ना, 7.5 एकड़ उसमें गई है मेरी।
6: नहीं ये जो ये मंडी वाली जमीन को छोड़ दें उसके बाद आपके पास बचते हैं इतने जो आपने बोले?
3: हाँ जी हाँ जी, 70 एकड़ जमीन है।
6: 70 एकड़ आपका किस भाव जाता है ठेके पे?
3: ये सर लगभग 50,000 की एवरेज आ जाती है, 48-50 की 47।
6: 50 की एवरेज मान लो आपके 50 एकड़ 50 की औसत इसका किराया, ये जो आपको अपने संसाधनों से आमदनी होती है, क्या आपने कभी बैठकर इसकी प्रॉपर प्लानिंग की है जीपीडीपी में या किसी ग्राम सभा में कि यूपी सार या भाई मारा और इसका इस साल यो काम करेंगे, इसमें गांव की भी राय लेते हो क्या कभी, या मतलब सरपंच
3: नहीं नहीं नहीं लेते हैं सर, वो पता ही होता है गांव में ना काम भी इतने बोल देते हैं लोग, मतलब ये वही वाला 10 करोड़ लगा लो इस पैसे हाँ। में तो ये दिक्कत है, एक तो ना हमारा जीएसटी भी लगता है, आधा जीएसटी खा जाता है पैसा।
6: अच्छा
3: तो कुछ हमें सैलरी सूली देनी पड़ती है।
6: न्यू ना करो यार, न्यू बदनाम ना करो सरकार ने, आधे जीएसटी का मतलब है कि 50% जीएसटी?
3: नहीं नहीं मतलब कहना है मतलब 7-8 लाख तो जीएसटी में चला जाता है सर।
6: अच्छा।
3: और फिर इसमें हमने सैलरी भी देनी अपनी, रिपेयरिंग पूरिंग भी करवानी होती है, ये जो छोटे मोटे काम चलते हैं हमारे, और इसके बाद जो लगता है ना मैं इसको बड़े विकास में लगाता हूँ सीधा।
6: महात्मा
3: जो गली बनानी है, कोई बिल्डिंग है, कोई चौपाल है, ये
6: मेरी को समझने की कोशिश करिए, मेरा उत्तर उस हिसाब से दीजिए और दोनों जने दे दो भाई, मंगत राम जी आप भी दे दो। क्या हम इस गांव की ग्राम सभा में गांव की अपने संसाधनों से जो आमदनी होती है साल भर में, हम इसको कहां किस मद में खर्च करेंगे, इसकी योजना ग्राम सभा में बनाते हैं क्या, या फिर सेक्रेटरी और सरपंच बना के बैठ करके मामले को निपटा देते हैं?
2: नहीं सर, ऐसा होता है कि जैसे ग्राम सभा करते हैं ना तो उसमें काम डिसाइड करते हैं, जैसे गांव वाले से सलाह लेते हैं, सलाह मशवरा करते हैं कि गांव में कौन कौन से काम करवाए जाने हैं, फिर वो सर प्रायोरिटी बेस पे काम करे जाते हैं।
6: ठीक ठीक ठीक।
0: मैं भी कुछ पूछना चाह रहा था सर, और प्रीतम जी आप अपना
6: पूछिए ना,
0: आप अपना प्रश्न
6: पूछिए पूछिए, आप पूछ लीजिए भारत जी। और इस बीच में मुझे ये लग रहा है कि अमित जी का माइक जो है ना वो ऑन है, अमित जी कुछ बोलिए, शायद आपकी आवाज हम तक पहुंच जाए, नहीं तो फिर लैंडलाइन से कॉल कर, मतलब हमारे स्टूडियो के नंबर पे कॉल कर लीजिए। हेलो अमित जी, चलिए कॉल आ रहा है शायद अमित जी का, यू उठाते हैं। हेलो
8: हाँ जी सर।
6: हाँ कौन बोल रहे हैं?
8: नमस्कार, वीडियो बोल रहा अमित वीडियो
0: जी,
6: वीडियो साहब आज तो ये उलझ गए, आप कहीं फोन ही नहीं, आपका ऑडियो ही नहीं ऑन हो पाया, आपका स्वागत है। आपको हमने इसलिए आज इस कार्यक्रम में इस पटल पे इसलिए आमंत्रित किया, आहूत किया कि आप हमें बता दें कि आपके क्षेत्राधिकार में से होकर के जो ये ब्रज की यात्रा गुजरती है, तीर्थयात्री गुजरते हैं, इनके लिए इनकी संभाल के लिए शासन ने क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं, किन किन चीजों की चिंता प्रशासन कर रहा है, गांव का गांव के लोगों का क्या सहयोग ले रहे हैं और कितने यात्री आते जाते हैं इस दौरान, थोड़ा सा एक तस्वीर उसकी खींच दीजिए अपने अपने स्वर अपने अंदाज में। अमित जी
8: सर नमस्कार, सर अमित वीडियो थोड़ा
6: सा जी जी
8: जो जो हमारे पलवल पलवल से स्टार्ट करते होडल और हसनपुर दो लोग पलवल के पड़ते हैं सर, उनमें से 8 गांव से होके श्रद्धालु और यात्री यहाँ से दिन और रात ये परिक्रमा कर रही है सर। हमारे हरियाणा के सर 8 गांव दाड़का सोम बंजारी डकोरा मरोली लिट्टी खाबी और हसनपुर, उसके बाद हसनपुर से आगे चलते सर यमुना पड़ जाती है जो यूपी और हरियाणा के बीच में है जी, उस यमुना के पुल से सर संतुलपुर पुल पड़ता है सर, उसको क्रॉस करते हुए श्रद्धालु यूपी में चले जाते हैं सर, यूपी की सीमा स्टार्ट हो जाती है और दिन रात सर इसमें श्रद्धालु चल रहे हैं जी, लाखों की तादाद में सर संभावना है कि श्रद्धालु इसको पूरा करेंगे, लगभग हजारों की संख्या में जब तक जैसा स्टार्ट हुआ सर तब से हमने देखा है हर रोज 25 से 30 हजार श्रद्धालु इसमें चल रहे हैं सर, और दिन रात ये परिक्रमा चल रही है 84 कोस की जी, और प्रशासन की तरफ से सर मेरी आवाज आ रही है सर उठक रहते
6: हाँ बिल्कुल, आप अपनी बात पूरी करें फिर हमसे हमारे मित्रों के मन में कोई सवाल होंगे तो पूछेंगे जी। अमित जी
8: ठीक है और जैसे सर ये हमारा जो ये नीम का से स्टार्ट हो जाता है डाड़ का गांव सबसे पहला हमारा हरियाणा का पड़ जाता है, इनमें सर श्रद्धालुओं के लिए सर पंचायत की तरफ से प्रशासन की तरफ से जो इनकी बेसिक नीड्स रहती है सर, जैसे गर्मी का मौसम है सर जिस मार्ग से ये चलते हैं परिक्रमा मार्ग से उनको सर हमने अपने तरफ से उसको मैटिंग करके जी जैसे उस पर ग्रीन मैट डाले हुए हैं उनके पानी की व्यवस्था, रात को चलते हैं सर बिजली की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए सर जगह जगह में कैंप लगाए हुए हैं, हेल्थ कैंप लगाए हुए हैं, बहुत से शिविर सर चल रहे हैं इस रोड पे जी जो प्रशासन की तरफ से भी चल रहे हैं और श्रद्धालु जो लोग हैं सर ब्रिज भूमि में जो भी श्रद्धालु लोग हैं प्राइवेट संस्थाएं वो भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रही है, गर्मी का मौसम से देखते हुए हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर सर उनके बैठने की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था, टेंट लगा के जी और उसमें पानी और ये जो उनकी बेसिक नीड्स हैं उसको देखते हुए प्रशासन उन पर पूरा ध्यान दे रहा है जी, लगातार सफाई व्यवस्था बनाए रखी हुई है वहां पर सर, और उनके खाने पीने के लिए सर शिविर बहुत अच्छी तरीके से लगे हुए हैं, जो भी मतलब श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सेहत का और उनके ध्यान रखते हुए सर इसको बड़े अच्छे तरीके से अब तक कोई किसी तरह की कोई समस्या तो अब तक नहीं आई है सर, जो हर रोज ही देख रहे हैं पुलिस प्रशासन भी इसमें लगा हुआ है लगातार दिन और रात की परिक्रमा है सर, और जो ये 8 गांव पड़ते हैं इनके जो सरपंच है हमारे वो लगातार वही गांव में जो भी जरूरत रहती है उन लोगों की अपनी तरफ से भी पंचायत की तरफ से भी और प्रशासन पंचायत समिति की तरफ से भी वो पूरी उनकी व्यवस्था बढ़िया तरीके से की हुई है सर उनकी
0: जी जी।
6: तो
0: अमित जी
6: आपकी बात में से
0: जी सर हमारे साथ जी जी हमारे साथ एनजीएफ से भी हमारे साथी जुड़े हैं, क्या आप अमित जी से कोई प्रश्न करना चाहेंगे?
9: जी हाँ जी नमस्कार, सबसे पहले तो नमस्कार सर, राम राम हरियाणा
0: जी, राम राम।
9: इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार करना चाहूंगा जो अमित जी हमारे साथ जुड़े, और अमित जी को सबसे पहले तो हमारे एक ऑडियंस है उनकी कॉल आई थी, जैसे पिछले कल राजवीर जी की आई थी तो उन्होंने एक सवाल और पूछा था, उन्होंने ये पूछा था कि जैसे गांव सतुआगढ़ी ये जो अपने हरियाणा के अंदर अंतिम गांव पड़ता है इस ब्रज 84 कोस यात्रा में पदयात्रा में, तो उन्होंने बोला कि ये जो यात्रीगण है कहीं ना कहीं उन्हें जो लाइटिंग की है जो वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लाइटिंग की व्यवस्था रात को चलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जब वो जमुना पुल पर जाते हैं, वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और दूसरा उन्होंने बताया कि वो जो श्रद्धालु हैं वो काफी मात्रा में काफी तादाद में वो क्या है कि जो प्रशासन की तरफ से जो अलॉट किया गया रास्ता है जो प्रशासन की तरफ से अलॉट किया गया मार्ग है उस रास्ते पर ना चल के वो दूसरे रास्तों पे चल रहे हैं, वो खेतों के मार्ग से होके हुए उस जमुना पुल पर पहुंच रहे हैं, उनकी एक ये समस्या भी थी सर, तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या प्रशासन की तरफ से इस समस्या के लिए कोई निवारण भी किया गया है
0: जी। जी अमित जी
8: सर, जैसे अच्छा जी जी सर, सर इसमें जैसे सर बता रहे हैं वहाँ पे लाइट की व्यवस्था बनाए रखने के लिए, वो जो सतवागढ़ी लास्ट गांव पड़ता है हमारे हरियाणा का सर, वहाँ से नदी स्टार्ट हो जा रही है, जहाँ सतवागढ़ी जिस गांव की बात कर रहे हैं वहाँ पेंट्रोल पुल है सर, वहाँ पे हमने जो लाइट की व्यवस्था जो पहली रात थी सर, उस दिन थोड़ी हमारी लाइटिंग कम थी, उस दिन रात को जो फर्स्ट डे था हमारा 17 तारीख का, उस दिन कुछ इशू आया था, हमारी जो लाइटें थी वो एक एक मतलब दूरी ज्यादा हो गई थी, लेकिन फिर हमने वहाँ पे फ्लड लाइट का इंतजाम कर दिया था, और जो वहाँ एज ए ग्राउंड है सर मतलब नदी के पास जो एरिया पड़ता है खेतों का एरिया है, हमने वहाँ पे लाइट व्यवस्था जो जो फ्लड लाइट होती है सर वो लगा के हमने वहाँ पे अच्छी मतलब व्यवस्था कर दी थी, उसके बाद मुझे नहीं लगता सर वहाँ से हमारे पास लाइट की कोई कंप्लेंट आई है, क्योंकि हमारे वहाँ पे सर ड्यूटी में शेड लगे हुए हैं, और जो वहाँ पे सर अभी हमारे डी साहब ने भी एसपी साहब ने भी 2 दिन पहले दौरा किया था सर अभी ना जी हाल ही में जी, अभी ये हमने लाइट की समस्या पहले भी नहीं थी, उसके बाद इसको रिजोल्व कर दिया था सर लाइट वगैरह के लिए ना जी, वहाँ पे प्रॉपर बिजली विभाग द्वारा भी ट्रांसफार्म और कनेक्शन दिया हुआ है, लाइटिंग के मेरे हिसाब से अब वहाँ कोई ऐसी समस्या नहीं है, और जहाँ तक रास्ते की और खेतों की बात आ रही है सर वो एक खुले मैदान का एरिया है, प्रशासन ने तो सर एक प्रॉपर रास्ता निकाल रखा है वहाँ से, अच्छा घोर आता है जो सीधा वहाँ से नदी से निकल सतवागढ़ी तक आ जाता है, लेकिन फिर भी श्रद्धालु शायद ये हो सकता है खेतों के बीच से आ रहा, लेकिन वहाँ पे जो प्रशासन लगा हुआ है और जो हमारी तरफ से भी जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं वहाँ साइन बोर्ड वगैरह भी है, तो रास्ते को श्रद्धालु शायद हो सकता है कि खेत के बीच से इधर से कवर कर रहे हो, खाली एरिया होगी वजह से
1: लाइट। मैं एक सवाल भारत जी मैं पूछूं
0: प्लीज सर,
1: भारत जी पूछूं
0: उसके बाद सर आप पूछिए और उसके बाद प्रीतम जी भी पूछेंगे।
1: हाँ अमित जी,
8: जी
1: अमित जी ये जो यात्रा है ये किस तारीख तक चलने वाली है परिक्रमा?
8: सर ये 20 जून तक चलेगी सर,
1: 20 जून तक चलेगी, तो इसमें हरियाणा के कुल 8 ही गांव हैं?
8: हाँ सर, हमारे जो इसमें गंज परिक्रमा के अंदर आते 8 गांव आते हैं, जो अलॉटेड गांव है वो 8 गांव है, जैसे जो सतवागढ़ी लास्ट गांव है ना सर मुक्तजाबाद वो हसनपुर में ही आ जाता है।
1: अच्छा, इसमें मेरा जो प्रश्न है कि अपने क्षेत्र से गुजरने वाले यात्रियों को मान लो कोई समस्या आ जाए किसी तरह की और उनको किसी मदद की आवश्यकता हो, तो क्या कोई कंट्रोल रूम या कोई ऐसा एक कोई टेलीफोन नंबर भी हेल्पलाइन जैसा भी शुरू किया है क्या हम लोगों ने?
8: सर हर जिस भी गांव से सर गुजर रहे हैं वहां पे हमारे कैंप लगे हुए हैं ऑलरेडी, सरपंच और सेक्रेटरी वहां मौजूद रहते हैं, प्रशासन वगैरह और पुलिस के बैरिकेड भी हैं सर हर एक गांव में भी, और जहां तक ये जैसे आप हर एक गांव में एक नोडल ऑफिसर बनाया हुआ है, हर एक गांव के ऊपर एक नोडल ऑफिसर बनाया हुआ है, और इस बंचारी गार्ड का हर एक उसको एक गांव अलॉटेड किया हुआ है, एक अधिकारी को, वो एसपीओ लेवल के हैं, बीडीओ लेवल के हैं, तहसीलदार लेवल के हैं, वो किसी भी श्रद्धालु को कोई कंप्लेंट आती है जो कुछ भी होते हैं वो नोडल ऑफिसर होते हैं, नंबर वगैरह वहाँ हर एक गाँव में अवेलेबल है, इंडिविजुअल अलग अलग गाँव की।
1: और ये यात्रा मार्ग जो है अमित जी, जो यात्रा मार्ग है जिस पर आप कह रहे हैं कि ग्रीन मैट भी बिछाया हुआ है यात्रियों की सुविधा के लिए, ये अन्यथा कच्चा भी है क्या कुछ हिस्सा, या पक्की सड़क है, मेटल रोड है?
8: नहीं सर, बहुत बहुत कहीं जहाँ कच्चा मार्ग भी है सर, और मेटल जो अपना तारकोरल सड़क भी आपकी है, लेकिन उसके लिए श्रद्धालुओं को चलने के लिए प्रशासन ने यात्रा शुरू होने से पहले ही 35 वर्ग वगैरह और जहाँ भी कोई खड्डे वगैरह थे उनको भरवा दिया गया था, कंप्लीट करवा दिया था सर मैक्सिमम हर जगह सर, और जिन गांव से निकलते हैं कहीं मैट की व्यवस्था है, कहीं पानी का छिड़काव है, और निरंतर चलता रहता है सर।
1: रेडियो अपना रेडियो दादरी से प्रीतम जी हमारे साथ हैं, प्रीतम जी के मन में कुछ सवाल उछाल मार रहे हैं, प्रीतम जी जरा पूछ डालिए आज।
10: सर मेरे मन में सवाल था वो आपने पूछ लिया, मैं पूछना चाह रहा था कि कोई हेल्पलाइन नंबर के बारे में पूछना चाहता था, और जो वीडियो साहब ने बताया बहुत ही अच्छा, प्रशासन ने यात्रियों के लिए बहुत ही अच्छा बंदोबस्त कर रखा है, इसके लिए मैं सरकार और पूरी सरकार का जो बंदोबस्त कर रखा है अधिकारियों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।
1: चलिए भारत जी आपके मन में कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम अमित जी को उनका काम करने देंगे, हम अपना काम करते हुए आगे बढ़ेंगे।
0: जी अमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक ही निवेदन है कि जो भी कोई श्रद्धालु अपने घर से अपनी श्रद्धा के साथ निकलता है, और उसके लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। जो आपने कहा वो पूरी तरह से बहुत ही अच्छा इंतजाम है, पर कई बार फिर भी कोई अगर कमी रह जाती है, कोई अगर हेल्पलाइन नंबर रखा जाए ताकि वो उस पर कॉल करके उनको तुरंत मदद मिल सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
11: थैंक यू सर,
0: धन्यवाद
1: जी। दोस्तों, राम राम हरियाणा सुन रहे हैं आप, मैं हूं वीरेंद्र सिंह चौहान, जो स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहा हूं, अदृश्य होकर के मैं बात कर रहा हूं सभी मित्रों से। राम राम हरियाणा में आज और अभी तक हम बात कर रहे थे हुडल के बीडीपीओ अमित जी से, और अमित जी हमें बता रहे थे कि ब्रज में जो परिक्रमा इन दिनों चल रही है, उस परिक्रमा के मार्ग पर 8 हरियाणवी गांव आते हैं, और 8 के 8 हरियाणा के गांवों में हमारे हरियाणा के शासन ने, प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए सारे इंतजाम किए हैं। यात्रियों के जो श्रद्धालुओं के, यात्रियों के पांव वो गड्ढों से परेशान ना हो, पत्थरों से परेशान ना हो। वीडियो साहब तो कह रहे हैं कि हमने ग्रीन मैट भी बिछवा रखा है, कानून व्यवस्था के लिए भी सारे साधन संसाधन वहां पर जुटाए गए हैं। आज बीडीपीओ साहब को बुलाने का मकसद यही था कि सरकार की ओर से वहां इंतजाम क्या किए गए हैं उस पर एक बातचीत हो जाए। बिजली का प्रश्न उठाया था भारत जी हमारे जो श्रोता थे उन्होंने, और वो मान लिया बीडीपीओ साहब ने कि पहली रात में संकट था, बिजली यानी कुछ क्षेत्र में अंधेरा रहा होगा, उसको दुरुस्त कर दिया गया है। वापस चलते हैं, पूजम चलेंगे, और हमारे साथ सुनील शर्मा जी अभी बरकरार हैं, और सेक्रेटरी महोदय अगर हैं तो उनको भी स्क्रीन पर रखा जाए। हम बात पूजम की करेंगे, गांव का नाम कितना सुंदर है पूजम। ये क्यों क्यों पड़ा था पंडित जी, कुछ इसका कारण कहानी भी है क्या, इसके गांव का नाम क्यों पड़ा था पूजम? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट करिए माइक बंद है आपका।
3: देखिए आवाज आ रही है सर?
0: जी जी
1: हाँ
0: जी
1: भाई,
3: हेलो।
0: हाँ जी आ रही है, बोलिए
3: जी सर। जब ये महाभारत टाइम में जब युद्ध हुआ था तो यहाँ कौरव पांडव दोनों ने यहाँ प्राचीन शिवलिंग है मेरे गांव के अंदर जो स्वयं प्रकट हुए भगवान शंकर यहाँ पर, तो यहाँ पर कौरव और पांडव ने दोनों ने पूजा करी थी अपने अस्त्र शस्त्र भी रखकर, तो उस वजह से गांव का नाम पूजन रख दिया गया था पूजा पूजा करने के बावजूद। लेकिन ये बस थोड़ा खेद है कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के इसमें अभी तक नहीं आया, हम एक दो बार लिख के दे चुके हैं वहां पर भी हमारे लोगों को इसमें सम्मिलित करें भाई। तो मेरा वहां तो सम्मिलित नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों को अपने गांव का पूरा भी है। और
1: मेरा तो अगला सवाल आपसे यही था कि क्या कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड
3: और गाँव में
1: सुनील जी की आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ मैं ये कह रहा था कि मैं तो आपसे यही पूछने वाला था कि आप अपने गांव के नाम को जोड़ रहे हो सीधे महाभारत काल और महाभारत के युद्ध में भी दोनों पक्षों ने वहां पूजा की थी। बहुत अच्छी बात है साहब, सुन के अच्छा लगा, और आपके बगल में मैं और आपके बिल्कुल आस पास में रहते हैं। प्रश्न ये है कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने आपकी जो आपका जो दावा है उसको काय स्वीकार नहीं किया, क्या आपने कागज वागज कोई शास्त्रीय प्रमाण उनको उपलब्ध नहीं कराए थे, क्या वजह रही?
3: उनके पास हम एक दो तीन बार गए और फिर वो कह रहे थे हम देखेंगे, फिर वहां से कोई रिस्पांस आया नहीं हमारा, फिर हम छोड़े क्योंकि हमारे गांव के लोग भूल जाते हैं, गांव में रहते हैं। इसके जो प्रमाण मांगे थे उन्होंने भी आपके गाँव के फूल से मेरे गाँव में रहते हैं, और एक मंदिर पूछा था उन्होंने भी मंदिर की साइड है, मैंने कहा भाई पश्चिम की तरफ है, वो जैसे पूछ रहे थे वो भी मान गए थे वो, तो मैंने कहा भी आप एक बार चेक कर लो आगे, अगर आप इसको सम्मिलित करना चाहते हैं नहीं, फिर हम तो अपने मंदिर का विकास पूरी तरह से कर रहे हैं, और यहाँ मेला भी भरता है दूज को ना, अप्रैल की दूज को, और बहुत आसपास के लोग दिल्ली से बड़े बड़े दूर से लोग आते हैं यहाँ पर, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, मंदिर आस पास के गाँव के जितने लोग है ना सब बड़े बड़े श्रद्धालु।
1: भाई आपने हमें तो बुलाया नहीं अब तक पंडित जी, इस चक्कर में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड वाले आपकी बात नहीं सुन रहे दिखे
3: सर, आपको बुला रहे हैं
1: और क्या बताओ, इतने बगल में रहते हो मेरे घर के पास में आप रहते हो,
3: नहीं आपको भी जल्दी बुला लेते
1: हैं। एक ग्राम सभा रखिए और
3: नहीं नहीं आपको बुला लेंगे सर, आपको तो मैं
1: हाँ जल्दी मिलेंगे आमने सामने बैठ के इस विषय को उठाएंगे। और ये गुरविंदर सिंह जी नोट कर लीजिए, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के जो मानद सचिव हैं उपेंद्र सिंघल, उनको हम जोड़ लेंगे अगले एक दो दिन में इसी कार्यक्रम में। और संजय बठला जी के पास जो 84 मतलब वो 48 को उसके तीर्थों की जिम्मेदारी है, तो संजय जी से पूछेंगे या उपेंद्र सिंघल जी से कि आखिर क्या है, पूजम को क्यों नहीं मान रहे। तो पूजम वालों का कि ये जो पेंडिंग इश्यू है इसको रिजोल्व करने की हम कोशिश करेंगे। गांव का एक एडवांसमेंट इंडेक्स होता है, गांव की तरक्की कितनी हो गई, कहां पहुंच गए, कहां रह गए। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, पंचायत विकास सूचकांक, आपने सुना है इसका नाम क्या? मंगतराम जी बताइए जरा।
2: जी सर।
1: क्या होता है ये जरा कुछ समझाइए अगर आपको आइडिया है तो।
2: सर इसको शॉर्ट फॉर्म में ना पाई बोल देते हैं। और इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि जैसे पॉपुलेशन, स्कूल कैसा है, हेल्थ फैसिलिटी कैसी है, गलियां कैसी हैं, नालियों में पानी खड़ोता नहीं होता, साफ सफाई कैसी है, और FIR वगैरह गांव में कितनी है, किसके ऊपर है, कितने मामले दर्ज है। तो इसमें सर बहुत सारी चीजें एड ऑन करके ना हम जैसे अपलोड करते हैं तो ऊपर से फिर उनका स्कोर जनरेट होके आता है कि इस गांव का ये स्कोर है। जी सर। तो उसको अपना PAI स्कोर बोल देते हैं
1: सर। तो बड़े बड़े दिनों के बाद, भारत जी बड़े दिनों के बाद किसी ग्राम सचिव ने पाई को व्याख्यायित किया है अपने अंदाज में, मुझे बहुत खुशी हो रही है। परसों सरपंच थे वो, उन्होंने ठीक से बात को कहा था। अब मुझे अगला सवाल आपसे ये करना है कि आप 15 दिन पहले तो पूजम के चौधरी बने हो, पूजम की सरकार के सचिव बने हो, इससे पहले जहां कहीं आप रहे, पाई 1.0 जो था, क्या आपने पाई 1.0 के समय में या अब पाई 2.0 जो है वो लॉन्च हो गया है, इस अवधि में कोई से एक गांव में गांव का पाई स्कोर, पाई चार्ट, विकास का वो जो तस्वीर है विकास की, उसको कहीं आपने सार्वजनिक स्थान पे डिस्प्ले किया क्या किसी एक गांव में?
2: सर। कहां पे? तखाना में है सर, जो वहां पे BC चौपाल है ना, उसमें सर CPL ऑफिस है, तो वहां पे उसके चौपाल के बाहर भी और CPL ऑफिस के अंदर, क्योंकि जो भी आमजन होते हैं सर CPL के पास अपने अपनी काम करवाना आते हैं, कोई पंचायत का या फिर कोई जैसे CSC वगैरह का कुछ भी काम, तो वहीं पे स्कोर लगाया हुआ है।
1: चलिए अब उसको वहां अगर लो अगर आके छुट्टी है
0: सर, हमारे साथ कॉलर
1: से बात करूंगा, बस एक वाक्य कह दूं मैं। कल वो जो आपने कहा तखाना का बताया ना ये शायद?
2: जी सर।
1: तखाणा में पाई स्कोर कहां पर लगा हुआ उसकी एक तस्वीर खींच के मुझे व्हाट्सएप कराइएगा कल।
2: जी सर।
1: हाँ जी ग्रामोदय वालों, कौन है श्रोता जरा बात कराइए। हेलो।
11: हेलो सर,

0: गांव में कुछ ऐसी चीज बनाई जाए, कोई ऐसी तस्वीर बनाई जाए, कोई ऐसी दिशा दी जाए ताकि कुरुक्षेत्रा जो बोर्ड है उस पर जुड़ने के लिए आसानी हो।
1: जी सर, अभी तक तो नहीं करा सर।
0: ये कब शुरू होगा सर?
1: जल्दी शुरू कर लेते हैं, इसको भी मिल लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं सर, कोई बुलाएंगे।
0: नहीं, आपने कहा
1: इनके थ्रू ही करवाएंगे।
0: जी आपने कहा अभी 15 दिन हुए हैं, सर तो कराएंगे ही, बट शुरुआत तो आप दोनों ने मिलकर करनी है, क्योंकि अगर सरपंच गांव के मुखिया है तो आप उसके संरक्षक है, तो आप दोनों ने मिलकर गांव को आगे बढ़ाना है। अभी आपके थोड़े से दिन हुए हैं, क्या आप बता सकते हैं पूजम गांव के बारे में कोई ऐसी बात जो आपको इन 15 दिनों में पता चली हो या सरपंच जी के साथ बात करके पता चली हो? और उसके बाद गुरविंदर जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी
2: भगत राम जी, पहले तो धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। मैं आपको ये याद रहना चाहता हूँ कि एक हमारे पंचायती राज का एक सरकार ने इनिशिएटिव लिया था, मेरा गांव मेरी धरोहर। क्या उसमें गांव की आपने वो जो जानकारी है, जैसे सरपंच साहब बोल रहे हैं कि वहां इतना ऐतिहासिक जो गांव है, उसके उसमें यही था कि गांव की जो पुरातन वो चीजें हैं सारी जो वहां पे बने हुए हैं यादगारे, उनको हमने आगे तक एक पोर्टल बना लेके जाना था, क्या आपको इसकी जानकारी थी?
1: जी सर, आती सर उसमें ना सर जो रिटर्न स्क्रिप्ट थी ना सर, वो मांग रखी थी।
2: हाँ जी,
1: कोई भी सर रिटर्न तो जो सर कोई भी 70 साल से पुराना सर कोई भी लिखा हुआ है।
3: मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम के दौरान जो एक ट्रेनिंग हुई थी HIRD में, आप थे क्या उसमें मंगत जी?
1: नहीं सर,
3: आप नहीं थे उसमें। चलिए, खैर मैं एक सवाल क्या पूछूं, एक जानकारी देता हूं आपको। अगर भरत जी आपके लिए भी नई जानकारी होगी, प्रीतम जी के लिए भी नई जानकारी होगी, लेकिन सुनील जी के लिए और मंगत राम जी के लिए शायद नहीं होगी। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड कुरुक्षेत्र के सभी तीर्थों की संभाल करता है। हरियाणा सरकार ने अनेक वर्षों से कुरुक्षेत्र के जो प्राचीन तीर्थ हैं, ब्रह्म सरोवर समेत वहां पर सैकड़ों की संख्या में मंदिर हैं, उन सब की संभाल करने का, कुरुक्षेत्र के विकास का एक उसकी एक योजना बनाकर और उसके लिए एक संस्थान खड़ा किया हुआ है, उसको हम कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड कहते हैं। ये जो गीता जयंती का अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव होता है, उसकी धुरी भी KDB होता है, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड। इसके जो अध्यक्ष हैं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के, वो हरियाणा के माननीय जो राज्यपाल होते हैं, महामहिम राज्यपाल वो होते हैं, और उसके एक मानद सचिव कोई ना कोई नियुक्त करती है सरकार। इन दिनों उपेंद्र सिंघल जी हैं वो उसके सचिव हैं। जो मैं बात बता रहा था, जो रोचक वाली बात है, वो ये कि कुरुक्षेत्र में जो उसकी कुरुक्षेत्र की 48 कोस की परिक्रमा है, क्यों पंडित जी, यही है ना, जो कुरुक्षेत्र की 48 कोस की युद्ध भूमि जो थी, जहां पर यह माना जाता है कि यहां लड़ाई हुई थी महाभारत में, उस सारी भूमि पर क्योंकि हजारों लाखों की संख्या में लाशें बिछी थी युद्ध में, तो कहते हैं कि यह संकट खड़ा हो गया युद्ध के बाद के, इनकी अंतिम क्रिया कौन करेगा, संस्कार कौन करेगा, लाशें तो रहेंगी यहां और उनके परिवार के लोग भी नहीं बचे, माने इतने सारा नरसंहार हो गया। तो भगवान कृष्ण के पास वहां उस समय के विद्वान गए कि प्रभु इनका क्या होगा, तो कहते हैं मान्यता यह है कि भगवान कृष्ण ने यह कहा कि जितने लोगों की मृत्यु इस भूमि पर हुई उनकी कोई पिंड क्रिया पिंडदान वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनकी अस्थियों को हरिद्वार या कहीं बहाने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक तरह से एक मुश्त छूट उन लोगों की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हुए भगवान कृष्ण ने कर दी। और साथ में यह कहा कि यह केवल अब के लिए नहीं है, महाभारत की लड़ाई के लिए जो इस समय मारे गए लोग, ये जो छूट है अनंत काल तक के लिए है। तो तब से लेकर मान्यता यह है कि महाभारत के समय से लेकर आज तक सुनील शर्मा जी के पूजन में और मेरे गांव गोंदर से लेकर जींद की तलहटी तक, इस दायरे के जो गांव हैं उन गांवों में अंतिम संस्कार के बाद अस्थियां एकत्रित तो करते हैं, लेकिन अस्थियों को प्रवाहित करने हरिद्वार या कहीं और गढ़गंगा जाने का रिवाज परंपरा

0: नहीं है। आमतौर पर इन गांवों में अस्थियां अंतिम संस्कार के बाद तीसरे दिन या जो भी फूल चुगना कहते हैं हमारे यहाँ उसको, अस्थियां संग्रहित करके उनको उसी गांव के किसी तालाब जोहड़ में दबा देते हैं, बहा देते हैं और कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता। तो एक पहचान किसी भी गांव की परंपरा से कि वो युद्ध भूमि का हिस्सा था कि नहीं, यही है कि वहां अस्थियां प्रवाहित करने का रिवाज है कि नहीं, हरिद्वार जाते हैं कि नहीं। तो इन्होंने कहा जी हमारे यहाँ तो नहीं जाते, इसलिए हमें भी शामिल करो। अब अड़चन कहां हो रही होगी सुनील जी, सुन लीजिए, अड़चन ये होगी कि जब कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के दायरे में आप अपने गांव के तीर्थ या मंदिर को लाना चाहते हैं तो वो आपसे अक्सर एक तो यही पूछ लिया कि अस्थियां तो प्रवाहित करने नहीं जाते, इसलिए युद्ध भूमि में तो हो। अब सवाल ये है कि आपका जो तीर्थ है ना गांव का, हर तीर्थ का भारत जी नाम होता है कुछ ना कुछ,
1: जी सर,
0: मंदिर मठ है ना हमारे गांवों में प्राचीन, उन सबके कोई ना कोई नाम है। तो कहीं ना कहीं जो प्राचीन तीर्थ हैं, चाहे वो ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र की बात करो, नरकातारी की बात कर लो, ज्योतिसर का तीर्थ कह लो, जहां गीता का उपदेश दिया गया, इनका कहीं ना कहीं किसी ना किसी शास्त्र में पुराण में कहीं ना कहीं जिक्र है। तो आम तौर पे कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड वाले ये कहते हैं जी आपके गांव का और तीर्थ का कहीं जिक्र है क्या किसी शास्त्र में, किसी कागज में एक श्लोक में दिखा दो, ले आओ फिर हम आपको आगोश में ले लेंगे, अपनी बाहों में ले लेंगे, अपने अपनी विकास योजना को आपका हिस्सा बना लेंगे। सेक्रेटरी साहब आप लोग मिलके ये खोजने का प्रयास करें कि पूजम की जड़ें किसी शास्त्र में हम ढूंढ पाए। और ये काम वैसे तो पंडित जी को करना चाहिए, तो भाई कड़ी तक खोजो, खोदो खोजो और बताओ, और फिर देखो हम आपके मंदिर और तीर्थ के विकास का काम अभी तो आप अपने दम पे कर रहे हैं, फिर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड को भी हम इसमें जोड़ सकते हैं। भारत जी, प्रीतम जी, आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वो पूछ लीजिए। और कौन कौन इस समय हैं हमारे साथ जुड़े हुए, साथी अदृश्य रूप में
1: जी, एनजीएफ से भी हमारे साथ आज साथी जुड़े हुए हैं। और प्रीतम जी आप क्या कहना चाहेंगे?
2: मेरा मांगेराम जी से एक सवाल है कि मांगेराम जी ने 10-15 दिन हुए हैं, इनके विचार में गांव की सभा पंचायत बुलाने का कब का विचार है? क्योंकि इन्होंने आके गांव की समस्या अभी से 10-12 दिन में पता नहीं चला होगा, तो ये ग्राम सभा कब बुला रहे हैं गांव की?
0: अगली ग्राम सभा, विशेष ग्राम सभा भी बुलानी पड़े तो बुला लीजिए, लेकिन कब बुलाएंगे, क्या सोचते हो मंगत राम जी?
3: सर ये जून या फिर जुलाई में, सर अभी सर जैसे मई तो चला गया है, जून में, जून के मिड में सर।
0: जो आपको हेडक्वार्टर से निर्देश आते हैं ग्राम सभा बुलाने के
3: वो
0: लिए,
3: तो सर वो सर स्पेशल ग्राम सभा के निर्देश आते हैं, जैसे कि 2 अक्टूबर को आ जाते हैं
0: ग्राम सभा,
3: या तो उसमें कर सकते हैं या फिर
0: ग्राम सभा आप ग्राम पंचायत और आप मिलकर उससे पहले भी बुला सकते हैं, उसके लिए कोई ऐसा नहीं है बुला ली तो कोई लठ बाजेगा या कोई चिट्ठी आ जाएगी रखो क्यों के कर लिया हो। तो प्रीतम जी ये तो कह रहे हैं जून जुलाई में बुलाएंगे, जून तो आने में कोई, जून आने में तो मेरे ख्याल ज्यादा देर बची नहीं।
3: जी सर
2: हाँ, इन्होंने समझ ये 10 दिन में गांव में क्या कमियां देखी कि ये कार्य पहले करवाया जा सकता है सर,
0: बताइए। ये महत्वपूर्ण सवाल है
3: सर। अभी तो जैसे गांव में देखा था सर, इनका नालियों का देखा था सर, जो ये बोल रहे थे सरपंच साहब ने भी आपको बताया कि भाई पाइपलाइन बिछवाने काम कर रहे थे, क्योंकि जैसे कई बार नालियां चौक हो जाती हैं, तो जिनका उनके पास घर लगता है तो उनको बहुत परेशानी होती है इस चीज में, चौक हो गया कहीं का तो घर नीचे पे है तो घर के अंदर तक पानी चला जाता है। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? तो सर उसी के लिए, समाधान के लिए सर, हमने सरपंच साहब ने और एक दो गांव के भी थे तो सब ने सलाह वगैरह करके फिर सर ये पाइपलाइन का काम शुरू करवा दिया था।
2: और अच्छा राम जी, मेरा एक सवाल हो रहा है, आप गांव को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए आपके मन में क्या विचार है, क्योंकि आज के टाइम में प्लास्टिक?
3: जी सर बिल्कुल प्लास्टिक मुक्त होना चाहिए सर, और जैसे सर हमारी ट्रेनिंग भी उसमें बताया गया था, जो ये नॉर्मल प्लास्टिक वाले बैग आते हैं ना, इनको तो बिल्कुल ही बैन कर रखा है। और हमें भी जैसे कि एक हिसाब से पावर दे रखी है कि कहीं पे भी हमारी एरिया में अगर प्लास्टिक वगैरह दिखते हैं तो तुम भी चालान कर सकते हो उनका, तो प्लास्टिक का यूज सिर्फ वो वाली करेंगे जो ऑथराइज होती है जो ऊपर से आती है, जो डिंगबस भी हो जाती है वो, तो भी सिर्फ वही यूज करेंगे और बाकी नॉर्मल प्लास्टिक नहीं यूज कर सकते, और सर प्लास्टिक तो बिल्कुल ही बैन होनी चाहिए।
4: आपके यहाँ ग्राम सचिवालय है क्या?
3: नहीं सर, ग्राम सचिवालय नहीं है सर अभी तक।
4: ई पुस्तकालय?
3: ई पुस्तकालय है सर।
4: कब बना, कितना पैसा लगा, कुछ अनुमान है?
3: जी सर, मुझे तो इतना अनुमान नहीं है सर, क्योंकि ये मेरे से तो काफी पहले के बना हुआ था। बाकी सर ये था कि पहले ये चौपाल थी, बीसी चौपाल के नाम से थी, उसके अंदर ही इसको पुस्तकालय को बनवा दिया गया था।
1: मांगेराम जी,
3: गांव के पास और कोई जगह नहीं थी।
1: मांगेराम जी, मेरा एक प्रश्न
3: ये
1: कि जब आपको कोई गांव के लिए आपको अपोस्ट किया जाता है, आपके पास 3 गांव है, जब आपने ज्वाइन किया आपको बेशक 15 दिन हुए हैं, तो जब आप गांव में ज्वाइन करते हैं जो जिम्मेदारी मिलती है, क्या उनका आप कुछ खाका, कुछ डिटेल्स, कुछ डेटा आप कुछ पहले पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं? आपने इन तीनों गांवों में कितनी बार विजिट किया है, कुछ आप बता सकते हैं?
3: तीनों गांव में सर लगभग ये होता है कि सर लगभग जाते ही हैं। जैसे एक बार ऐसा होता है कि बीडीपी ऑफिस में ही जैसे पूरा दिन काम में चला गया, तो सर या फिर करनाल सी ऑफिस में, डीडीपी ऑफिस काम में चला गया, वैसे तो नहीं जाता, लेकिन कभी ना कभी कुछ ना कुछ पंचायत में जाना होता ही है।
1: एक कॉल आ रहा है, हेलो, कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं?
5: नमस्ते सर, सर मैं ग्राम पंचायत सतवागढ़ी से बोल रहा हूँ जी, हसनपुर ब्लॉक से।
1: जी जी बताइए, क्या कहना चाहिए, क्या नाम है आपका?
5: सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी जी, अभी ब्रज 84 कोस की परिक्रमा चल रही है जी, हमारे गांव से निकलते हुए, गांव सतवागढ़ी में से।
1: जी जी।
5: महादेव मंदिर से गांव सतवागढ़ी तक, यमुना पुल तक, कोई भी सर तिरंगा लाइट नहीं है, कैसे की लाइट की व्यवस्था नहीं है, यात्रियों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है सर।
1: अभी हमारे साथ आप हमारी बात आप सुनेंगे, तो अभी हमारे साथ अमित चौधरी जी थे जो होडल के BDPO हैं, और साथ में NGF रेडियो जो पलवल में है, उन वो दोनों हमारे साथ थे। उन्होंने ये कहा कि उस जगह पर पहले शुरुआत में लाइट की कुछ समस्या थी, बाद में हमने वहाँ पर लाइटें पूरी कर दी है, तो आप स्पष्ट बताइए कि अब क्या स्थिति है वहाँ पे?
5: सर महादेव मंदिर से आगे तिरंगा लाइट की कैसी भी कोई भी व्यवस्था नहीं है।
1: वीरेंद्र सर क्या कहते हैं आप?
4: लाइट, कौन सी लाइट कह रहे हैं, शब्द मुझे समझ नहीं आ रहा,
1: ये कह रहे हैं
4: सुन पा रहे हैं क्या?
6: तिरंगा लाइट सर,
1: जो रास्ता है जिस रास्ते पे श्रद्धालु चल रहे हैं। हाँ जी आप बताइए, नाम क्या बताया आपने?
6: तिरंगा लाइट सर, तिरंगा लाइट बोल रहे हैं।
1: नाम आपका नहीं समझ,
4: नाम दोबारा,
5: कपिल, कपिल,
1: हाँ कपिल जी, कपिल आप दोबारा बताइए, स्पष्ट रूप से बताइए, ताकि हम अमित चौधरी तक ये बात आपकी पहुंचाएंगे। आप दोबारा बताइए, आप स्पष्ट रूप से क्या कहना चाहते हैं?
5: सर हसनपुर महादेव के मंदिर से लेकर ग्राम सतवागढ़ी यमुना नदी तक तिरंगा लाइट नहीं है।
1: अगर तिरंगा, अगर तिरंगा लाइट नहीं है तो बाकी लाइट है वहां पर, जो श्रद्धालु चल रहे हैं क्या वो अंधेरे में चल रहे हैं या उनको लाइट वहां मिल रही है?
5: बाकी लाइट तो है सर, लेकिन यमुना पुल तक नहीं है।
1: अच्छा,
5: तिरंगा लाइट लगनी चाहिए
1: जी। जी
4: एक काम मेरे कहने से ये करें भारत जी।
1: जी
4: कपिल भाई
5: जी सर,
4: आप ये जो वहाँ होडल के BDPO हैं अमित जी, वो आज हमारे साथ जुड़े थे, और ये होडल बैठते होंगे मेरे ख्याल से, आपसे कितनी दूर है होडल?
5: होडल सर 16 किलोमीटर।
4: अच्छा, अगर आपको लगता है कि आप होडल की तरफ जा सकते हैं तो एक बार इनसे मिलकर ये बात लिखित में दे दीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि ये काम ज्यादा मुश्किल होगा तो आप एक पत्र मेरे पास भिजवा दें BDPO के नाम, स्टूडियो के नंबर पर जिस पर आपने फोन किया है उसी पर भेज दें, वो मेरे पास आ जाएगा।
5: ठीक है सर। एक सर छोटी सी रिक्वेस्ट ये थी कि जो परिक्रमा है वो महादेव मंदिर से होते हुए यमुना नदी के पास पास चल रही है, जो हसनपुर के लोगों को भटका रहे हैं, उनको गुमराह कर देते हैं, वहाँ रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, खेतों की मेड़ से होते हुए निकल रहे हैं यमुना नदी के पास, वहाँ ढाई टूटने से किसी को भी चोट लग सकती है, एक्चुअल जो रास्ता है उससे परिक्रमा नहीं निकल रही सर।
6: कपिल जी, कपिल जी, कपिल जी,
5: जी सर
6: कापल जी एक नंबर नोट कीजिए आप वीडियो साहब का,
5: एक मिनट सर बोलिए सर।
6: 9595 186 16 16 16 259 259।
5: सर क्या नाम है इनका?
6: इनका नाम है अमित चौधरी जी, जो वहां पे नोडल अफसर है, जो जो प्रोग्राम है ना उसके सारे को देख रहे हैं। आप इस फोन पे इनके साथ संपर्क कर सकते हैं।
1: मैं कपिल जी को एक बात कहना चाहता हूँ, फोन आप उनको जरूर करिएगा। और उन्होंने अभी आज के हमारे इस प्रोग्राम में बता दिया था कि जितने भी वहां पे गांव है हरियाणा के, हर जगह पे पुलिस पोस्ट लगी है जो उनको गाइड करते हैं, जो उनको हेल्प करते हैं। अगर किसी को कोई समस्या आ जाए उस समस्या का भी वो समाधान करते हैं। इसका भी जिक्र कर लीजिएगा जब आप उनसे बात करेंगे।
2: भारत जी समय थोड़ा बचा, आप मैसेज पढ़ दीजिए, कल भी नहीं पढ़ पाए हम।
1: जी जी नहीं, कल हम पढ़ पाए थे जो मेरे को मैसेज यहाँ से दिख रहे हैं। कपिल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जुड़ने के लिए। हमारे पास सोशल मीडिया से जो मैसेज आए हैं वो सर्जन सिंह लिखते हैं राम राम हरियाणा, साहिल शर्मा राम राम हरियाणा लिखते हैं, विजय सिंह लखेरा राम राम हरियाणा लिखते हैं, दिनेश व्यास जय श्री राम भाई साहब और सुनील शर्मा राम राम हरियाणा लिखते हैं, अशोक मान लिखते हैं राम राम जी, और कुलदीप लांबा राम राम हरियाणा लिखते हैं, और रेडियो ग्रामोदय ताली बजा रहे हैं इस कार्यक्रम के सक्सेस होने के लिए, उपलब्धि पर। इस कार्यक्रम का समय तो समाप्त हुआ है और मैं दोनों आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे यह अनुरोध करूंगा कि आप अपना समन्वय बनाएं, आप बैठें डिस्कस करें, ग्राम सभा बुलाएं, उस पे लोगों की जो बात है वो सुने और उसका समाधान करें। और क्योंकि आप ऐसी पावन जगह से हैं, पूजम गाँव में है, और उसकी जो गरिमा है उसको बनाए रखें। और इन्हीं शब्दों के साथ मेरी ओर से राम राम हरियाणा। वीरेंद्र सर
4: मैं समझता हूं कि मुझे आज आप सबकी ओर से राम राम कहने का अवसर दे दीजिए। राम राम हरियाणा के आज के अंक को हम सब राम वाले यहीं पर विराम देते हैं, और हम सब की ओर से सब सुनने वालों को देखने वालों को कल तक के लिए राम राम, और कल तक के लिए राम राम। अरे ये कॉलर आ गए भाई साहब, इनको
1: कॉल। जी जी कॉल आ रहा है। हेलो
4: हेलो श्रोता जी।
7: हेलो सर नमस्कार।
1: ममता जी बोल
4: नमस्ते
1: रही
7: है। ममता बोल रही हूँ।
1: हाँ जी आवाज तो पहचान ली हमने।
4: जल्दी करो ममता जी, अभी गाड़ी छूटने का समय हो रहा है।
7: मैं कह रही हूँ सर कल आए आपके पास, ठंडी हवा आएगी दादरी से।
4: मारे ठंडी हवा आएगी तो हमने मान लो ये दादरी तो आई है।
1: चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चरखी दादरी का जो परचम है वो आप लहराती रहती हैं। और सर समय हो चुका है।
4: भारत जी ये जो ममता जी ने किया ना, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मौसम का ताजा हाल इन्होंने सुना दिया। और इतनी बेताब श्रोता हैं कि इनको लगा कि गड्डी छूट जाएगी, इससे पहले सुना दूं।
1: चलिए बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद,
4: बहुत धन्यवाद
1: सभी का। और सभी को राम राम हरियाणा। कल कल मिलेंगे 4 बजे।
6: प्रीतम जी कल के प्रोग्राम में हमारे जो मेहमान है ना उनकी जानकारी भी श्रोता के साथ साझी कर दीजिए।
2: कल हमारे साथ एडवोकेट जुड़ेंगे दीविता गोयल जी, और एक पुलिस अधिकारी जुड़ेंगे जो पोस्को एक्ट के बारे में बताएंगे।
4: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सबको राम राम। और कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम, कल होगी मुलाकात राम राम हरियाणा में फिर से एक बार नई ऊर्जा के साथ।
1: जी राम राम सारे ने।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का आपके जीवन का प्रवाह मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्धजनों को, सीनियर सिटीजन्स को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

खातर अरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

0: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
1: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
0: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
1: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 1500 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
0: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।
2: सही रास्ता, सही चुनाव। सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
3: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
2: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
3: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
2: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
3: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
2: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें।
3: www.sdcollegeambala.ac.in।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
3: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
2: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
3: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
2: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 8। आज का कार्यक्रम लेखक शैलेंद्र पर आधारित है। पेश करेंगे आरजे किरनी। रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने। निर्देशन भारत सोपोरी का।

आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता 90.0 FM मेगाहर्ट्ज पर। पेश है कार्यक्रम सुनहरी पल। सभी श्रोताओं को मेरा यानी किडनी का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका एक खास प्रोग्राम में, जहां अल्फाज होंगे, जज्बात होंगे और शैलेंद्र के लिखे हुए गीतों की बातें होंगी। गीतकार शैलेंद्र, जो शब्दों का जादूगर था, जिनके गीत हर दिल की धड़कन बन गए। चलिए शुरू करते हैं ये आज का खास कार्यक्रम उन्हीं के लिखी हुई दो लाइनों के साथ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये गीत सिर्फ अल्फाज नहीं, एक फिलॉसफी है, एक जज्बा है, जो हमें जिंदगी से प्यार करना सिखाता है। आज का प्रोग्राम इस जादूगर के नाम।

संगीत की दुनिया में जब कभी भी गीतकारों की चर्चा होती है तो शंकर लाल केसरी लाल यानी शैलेंद्र का नाम बड़े अदब के साथ लिया जाता है। फुटपाथ पर सोने वाले बेघर बेसहारा इंसान से लेकर दौलतमंद सब उनके दीवाने थे। शैलेंद्र ने अपने जीवन में ऐसे बेहतरीन गाने लिखे कि उसमें कौन अच्छा और किसे नापसंद कहे समझ में नहीं आता। आज भी लोगों के जहन में उनके लिखे गीतों की सुरीली तान सुनाई देती है। गीतों के राजकुमार कहे जाने वाले शैलेंद्र का जन्म 30 अगस्त 1923 को रावलपिंडी में हुआ था, जबकि शैलेंद्र के पूर्वज बिहार के भोजपुर के रहने वाले थे। गुजर बसर करने के लिए शैलेंद्र का परिवार रावलपिंडी आ गया और वहीं उनका जन्म हुआ।

जन्म होते ही शैलेंद्र के पिता ने पूरे इलाके में मिठाई बंटवाई, लेकिन वक्त की चाल को कौन समझ सकता है, हालात कुछ ऐसे बने कि पूरा परिवार आर्थिक बदहाली का शिकार हो गया और फिर ये तय हुआ कि रावलपिंडी छोड़कर मथुरा चला जाए। मथुरा में शैलेंद्र के बड़े भाई रेलवे में नौकरी किया करते थे। शैलेंद्र का बचपन मथुरा में ही बीता और स्कूली शिक्षा भी मथुरा के सरकारी स्कूल से हुई। उन्होंने इंटर तक की पढ़ाई वही के कॉलेज से की। पढ़ाई में शैलेंद्र शुरू से ही तेज थे। पढ़ाई के दौरान शैलेंद्र को पूरे उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान मिला। उन्हें बचपन से ही कविता लिखने और डफली बजाने का शौक था। मथुरा में कुछ समय बिताने के बाद पारिवारिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि शैलेंद्र को मुंबई की ओर रुख करना पड़ा। कुछ कमाकर अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए शैलेंद्र ने मुंबई के माटुंगा रेलवे स्टेशन पर हेल्पर की नौकरी की। संगीत और कविता का सबसे बड़ा आवारा और साधारण शब्दों के असाधारण गीतकार शैलेंद्र 1948 की उमस भरी शाम में एक कवि सम्मेलन में कविता पाठ कर रहे थे कि उसी सम्मेलन में सूट बूट पहना हुआ एक शख्स उनके पास जा पहुंचा और कहा, मेरा नाम राज कपूर है।

दरअसल राजकपूर उन दिनों फिल्म आग की शूटिंग कर रही थी। शैलेंद्र की कविता सुनकर राजकपूर इतने खुश हुए कि उन्हें आग्रह किया कि वो अपनी कविता को उनके फिल्म के लिए लिखे, मगर शैलेंद्र ने राजकपूर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और बोले, मैं अपनी कविता का कारोबार नहीं करता, मगर वक्त की नजाकत को कौन समझ सकता है। कुछ समय बाद हालात ऐसे पनपे कि शैलेंद्र की माँ की अचानक तबीयत खराब हो गई और उनके पास एक फूटी कोड़ी तक भी नहीं थी। फिर शैलेंद्र राजकपूर के पास गए और 500 रुपए उधार मांगे। तब तक राजकपूर शैलेंद्र पर फिदा हो चुके थे। उन्होंने अपने फिल्म में शैलेंद्र से गीत लिखवाने का वादा किया था और इस तरह माँ के कर्ज ने उन्हें गीतकार बना दिया। मशहूर गीतकार गुलजार साहब का कहना है, शैलेंद्र जैसा कोई नहीं हुआ दूसरा, उनकी कर्जदार रहेगी दुनिया। वो एक मायने से दूसरे मायने निकालते थे गीत में।

शैलेंद्र को टाइटल सॉन्ग का निर्माता भी कहा जाता है। 1948 में फिल्म बरसात में बतौर गीतकार अपने करियर की शुरुआत करने वाले शैलेंद्र ने जीवन में अनेक ऐसे गीत लिखे आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। शैलेंद्र के बारे में मशहूर गीतकार जावेद अख्तर साहब का कहना है, जीनियस थे शैलेंद्र। दरअसल उनका रिश्ता बनता है कबीर और मीरा से। बड़ी बात को सादगी से कह देने का जो गुण शैलेंद्र में था वो किसी में नहीं था। उन्होंने बरसात के अलावा गाइड, मेरा नाम जोकर समेत कई फिल्मों के लिए गीत लिखे, लेकिन 1962 में बनी फिल्म तीसरी कसम ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। फिल्म तीसरी कसम में शैलेंद्र ने बतौर निर्देशक भी काम किया। लगभग 4 साल तक चली इस फिल्म की शूटिंग ने उन्हें कर्जदार बना दिया। दोस्तों के भरोसे शैलेंद्र निर्माता बने, लेकिन उन्हें नुकसान हुआ। उन्होंने दोस्तों के व्यवहार को देखते हुए बाद में फिल्म नहीं बनाने की कसम खाई। फिल्म तीसरी कसम बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। फिल्म के लिए कर्ज की वजह से वो शराब की लत में डूब गए।

गीतकार गुलजार साहब का कहना है, शैलेंद्र को हिंदी सिनेमा का आज तक का सबसे बड़ा गीतकार कहा जाता है। उनके गीतों को खुरच कर देखें तो आपको सतह के नीचे दबे नए अर्थ प्राप्त होंगे। उनके एक ही गीत में न जाने कितने गहरे अर्थ छुपे होते थे।

शैलेंद्र तो वो गीतकार है जिन्होंने एक नन्हे शिशु का भी अपने गीतों में ख्याल करा और बड़े जान की शिशु जैसे नींद का जब वे लिखते हैं, आजा रे आनिंदिया तू, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, आंखों में सपने सजाओ रे निंदिया तो आई। शैलेंद्र एक समावेशी कवि है। उन्होंने तकरीबन हर उस भाव के गाने लिखे जो आम इंसान के जीवन में रोज मौजूद रहते हैं। प्यार, काम, अफसोस, दुख, रोमांच, आप जिस भाव को उठा लाए शैलेंद्र का लिखा कोई गीत आपके पास तक चल कर आ जाएगा। उनकी भाषा सरल है, व्यक्ति को शब्दों के जाल में नहीं फंसाते थे। शैलेंद्र को बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। शैलेंद्र एक ऐसे गीतकार थे जिनको 3 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार मिला। शैलेंद्र सिंह को इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2022-23 से सम्मानित किया गया है। शैलेंद्र कुमार को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया।

शैलेंद्र को कलम का कलंदर कहा जाता है। इस तरह कलम का कलंदर कला के कारोबार में किनारे ना लग सका। शैलेंद्र सड़क पर आ चुके थे। शब्दों का जादूगर शराब में डूब गया और शराब शैलेंद्र की जिंदगी को पीती चली गई। 13 दिसंबर की 1966 को अचानक शैलेंद्र की तबीयत खराब हो गई। अस्पताल जाने के क्रम में उन्होंने राज कपूर को मिलने के लिए बुलाया, जहां उन्होंने राज कपूर से उनकी फिल्म मेरा नाम जोकर के गीत जीना यहाँ मरना यहाँ करने का वादा किया, मगर ये वादा अधूरा रह गया। और अगले दिन 14 दिसंबर 1966 की मनहूस शाम ने शैलेंद्र को हम सब से छीन लिया। इसे महज एक संयोग ही कहा जाएगा कि उसी दिन राज कपूर का जन्मदिन भी था, हालांकि उनके अधूरे उस गीत को उनके बेटे शैली शैलेंद्र ने शक्ल दी।

ये भी दिलचस्प संयोग है कि शैलेंद्र का निधन उसी दिन हुआ जिस दिन राजकपूर का जन्मदिन मनाया जाता है। राजकपूर ने नॉर्थ कोर्ट नर्सिंग होम में अपने दोस्त के निधन के बाद कहा था, मेरे दोस्त ने जाने के लिए कौन सा दिन चुना, किसी का जन्म किसी का मरण, कवि था ना, इस बात को खूब समझता था। शैलेंद्र तो चले गए लेकिन भारतीय फिल्मों को 800 गीत दिए जो हमेशा उनकी याद दिलाने के लिए मौजूद है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम का मैं समापन करती हूँ और आपको छोड़े जा रही हूँ शैलेंद्र के लिखे हुए एक बेहतरीन गीत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 8। कार्यक्रम को पेश किया आरजे किन्नी ने। आज का कार्यक्रम आधारित था लिरिसिस्ट शैलेंद्र पर। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने। एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
2: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
1: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
2: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
1: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।
3: रूप तेरा मस्ताना प्यार में

0: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
1: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
0: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
1: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
0: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।

0: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
1: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
0: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
1: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
0: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं सिंगर नीलम नारायण। मेरा एक बहुत प्यारा वीडियो सॉन्ग मीठे मीठे इश्क की रिलीज हो चुका है, जो आप रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पे सुनने जा रहे हैं। अपना स्नेह जरूर दें। धन्यवाद।

रेडियो विदस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर विदस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

0: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

ए रहबर, बता दे किधर की तलाश है तुझे, मुझे लूटने के बाद किसको लूटना है। नमस्ते, मैं हूं रमेश मराठा।

गुलाबी मौसम में खुशबू की तरह महकते रहो, जानते ही मुस्कुराहट है तुम्हारे हुस्न का जेवर, यूं ही मुस्कुराते रहो। जब मोहब्बत तुमसे है तो ख्वाबों के आईने में हमारे बनकर रह जाओगे। आज रहने दीजिए ये गिले शिकवे, आज की शब हम न जाने देंगे, क्योंकि खुशबू बनकर आए हो एक तवील मुद्दत के बाद, यूं ही इस गुलाबी मौसम में महकते रहो हमारी खुशबू बनकर।

के साथ साथ शक्लें बेशक बदल चुकी हों, पर एतबार पहले ही की तरह अटल है। सोबतें सही रास्ता दिखाती हैं और मंजिल का पता भी बताती हैं, चाहे हम दूर तक चलते रहें, अपने पीछे कदमों के निशान छोड़ ही जाते हैं, यह सोचकर कि कोई मुझे ढूंढ तो ले।

वो जो चाहती बांटते रहे सरेआम अपनी खुशियों को नीलाम करके, पर इसके बावजूद चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रही, क्योंकि वो जीने का अंदाज जानता था।

जानता था वो दिल बहलाना, कहीं दूर पतंग की डोर पकड़कर खुले आकाश में पतंग को उड़ाने का हुनर जानता था। उसकी एक मुस्कान के लिए अपनी मुस्कुराहट फिदा करता था।

दोस्तों, आपको आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब चाहेंगे आपसे इजाजत। नमस्ते।

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे थे एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक निरंतर रहते हैं और बात करते हैं वो जो आपसे रखती हो सरोकार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। आज के लिए बस इतना ही। स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:01 और 19 सेकेंड। श्रोतागण, एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा स्टेशन रेडियो विदस्ता। मैं हूं आपका रेडियो होस्ट और दोस्त भारत सोपोरी। समय हो चला है हमारे आज के सफर को यहीं पर विराम देने का, लेकिन विदा लेने से पहले आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसे महानायक को याद करने का है जिनका नाम सुनते ही रगों में देशभक्ति का लहू उबलने लगता है। श्रोताओं, आज 28 मई है। आज पूरे देश भारत माँ के महान सपूत, प्रखर स्वतंत्रता सेनानी, अद्वितीय राजनीतिक विचारक और दूरदर्शी समाज सुधारक विनायक दामोदर सावरकर जी की जयंती मना रहे हैं। इतिहास इन्हें वीर सावर के नाम से याद करता है और उनका जीवन हम सभी के लिए राष्ट्रवाद की एक जीती जागती पाठशाला है। वीर सावरकर शौर्य और संकल्प की गाथा। विनायक दामोदर सावरकर जी का जन्म 28 मई 1883 को हुआ था। वे केवल एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि एक उच्च कोटि के लेखक, कवि और इतिहासकार भी थे। उन्होंने 1857 के संघर्ष को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहकर इतिहास की सही व्याख्या दुनिया को सामने रखी थी। कठिनाइयां केवल हमारे साहस को परखने के लिए आती हैं, वीर सावरकर, यह उनका कथन है। अंडमान की कालकोठरी और अदमय साहस। वीर सावरकर को ब्रिटिश सरकार ने 2 आजन्म यानी 50 वर्ष का कारावास की सजा देकर अंडमान की कुख्यात सेलुलर जेल, जिसको काला पानी भी कहा जाता था, भेजा था। उस घोर अंधकार और अमानवीय यातनाओं के बीच भी उनका हौसला नहीं टूटा। अब जब उन्हें लिखने के लिए कागज और कलम नहीं दी गई तो उन्होंने जेल की दीवारों पर कीलों और कांटों से महाकाव्य लिख डाले और उन्हें कंठस्थ कर लिया। ऐसा अद्भुत मानसिक बल सिर्फ एक सच्चे राष्ट्रभक्त के पास ही हो सकता है। सामाजिक सुधार के अग्रदूत सावरकर जी ने केवल देश की राजनीतिक आजादी नहीं चाहते थे, बल्कि वे समाज को भी रूढ़ियों से आजाद देखना चाहते थे। उन्होंने जातिवाद और छुआछूत का कड़ा विरोध किया था। उन्होंने पतित पावन मंदिर की स्थापना की, जहां पर समाज के हर वर्ग के लोगों को प्रवेश का अधिकार था। वे एक आधुनिक और वैज्ञानिक सोच वाले भारत का निर्माण करना चाहते थे। आज उनकी जयंती पर रेडियो वितस्ता परिवार उन्हें कोटि कोटि नमन करता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हो, अगर दिल में देश के लिए मर मिटने का जज्बा हो तो कोई भी बड़ा आपको बांध, कोई भी बेड़ा आपको बांध नहीं सकती। तो यह था आज का विषय। और श्रोताओं, अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि हम आज के इस खूबसूरत सफर को यहीं विराम दें। आज के प्रेरणा के शब्द की इन पंक्तियों के साथ विदा आपसे लेते हैं। हर दिन की तरह 4 पंक्तियां आपके लिए लाया हूं। आज की पंक्तियां हैं, लोरी सुना रही है रात, अब तुम सो जाओ। खोए हो दिन की बागदौड़ में, अब ख्वाबों में खो जाओ। कल फिर महकेगी महफिल नए तरानों के साथ। रेडियो वितस्ता की यादों को समेट कर अब चैन से सो जाओ। ये था आज का विवरण और आज की पंक्तियां। जाते जाते आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल 29 मई 2026 शुक्रवार को हम शुरुआत करेंगे 5:58 पर वंदे मातरम से, और लाएंगे आपके लिए एक सुविचार और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ।
छह बजे भक्ति संगीत और कल आप सुनेंगे शब्द और गुरबानी भी। 7:05 पर रेट्रो हिट्स एपिसोड 10, शीर्षक होगा शाम, पेश करेंगे आरजे किरनी। 8:30 शुक्रवार को आप सुनते हैं रंगमंच की ओर, कल एपिसोड 3 होगा, पेश करेंगे मानव मेहरा। 9:30 युवा ही देश का भविष्य और 10:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम इनसे मिलिए एपिसोड 11, माधवी शर्मा होंगी हमारे साथ। संगीत की सभा जारी रहेगी और कल शुक्रवार को आपको इंतजार रहता है कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, जिसमें आप पूरे देश भर से हमें फरमाइशें भेजते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपकी फरमाइशों को दूसरे श्रोताओं तक पहुंचा सकें। कल सुनिएगा जरूर और इसका पुनः प्रसारण अगले बुधवार को होगा दिन के 2:00। 6:00 भक्ति संगीत, 6:30 शाम में गजल और 7:00 रेट्रो हिट्स और 8:30 कार्यक्रम सुहाना सफर पेश करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है तुम्हारा साया। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का और उम्मीद करते हैं कि आप अपना फीडबैक भेजेंगे हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। आज के इस विशेष प्रसारण को तकनीकी सहयोग और सुरीली धुनों से सजा रहे थे हमारे अपने भारत सोपोरी और टीम रेडियो वितस्ता। भारत सोपोरी जी के बेहतरीन साथ और आवाज के साथ अब रेडियो वितस्ता के आज के प्रसारण को यहीं समाप्त करने की दीजिए अनुमति। कल सुबह फिर होगी मुलाकात नई ऊर्जा, नई खबरों, नई बेहतरीन गानों और तरंगों के साथ। तब तक आप सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। खुश रहिए, खुशहाल रहिए। मिलते हैं कल सुबह 5:58 पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।